और वो लोग जो कल उसके रुतबे की तमन्ना करते थे सुबह को कहने लगे, हाय शामत, अल्लाह ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज्क फराह कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता। हाय खराबी, काफिर निजात नहीं पा सकते।

इब्राहिम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होंगी।

ياسين.

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदाम करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।

टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाएं तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में।

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.5.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Tuesday, 4th of Rabiul Awal, August the 18th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has directed the authorities concerned to ensure timely, transparent and convenient digital services for the people. The Deputy Prime Minister has urged the diplomats to serve Pakistan with professionalism and compassion, keeping the country's interests at the heart of their work. The Inter-Services Public Relations says India is trying to colour the history in its preferred hues after refusing to face the harsh reality of defeat in Mar-e-Haq. Pakistan has urged the international community to hold India accountable for its state-sponsored terrorism in the region.
2: 101 FM.
3: We'll be back after this short commercial break.
4: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी, ना पेट्रोल का खर्चा, ना आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, जहां कहीं भी बैठे, किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
5: दिस इज FM 101.
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। To the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: Coming up next, 101 News Headlines.
1: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका हुकाम को आवाम के लिए बर वक्त शफाफ और आसान डिजिटल खिदमात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सफारतकारों पर जोर दिया है कि वो अपने फराइज़ की अंजामदेही में मुल्की मफादात को अवलीन तरजीह देते हुए पेशावराना महारत और दयानतदारी के साथ पाकिस्तान की खिदमत करें। मारूफ पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकार अख्तर हुसैन अखियां की 23वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी। ना पेट्रोल का खर्चा, ना आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
4: दिस इज FM 101।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान।
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

ताजो तख्त दौलत मौला की थी अदा, रद करके अपने हक को क्यों दी खुद को सजा। मुश्किल था लेकिन जीने का रास्ता,

0: Freak Socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके, आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक बारिश होने वाली है।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

this music, and then this magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101. A bale bale, o shower.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मनाजिर हुसैन से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा साल हज के लिए तमाम जरूरी इंतजामात बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की है। सदर मुमलिकत ने पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए पाकिस्तान का अज़्म जाहिर किया है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह भारत के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करे और खित्ते में उसकी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पर उसका मुहासबा करे। और नेशनल चैंपियंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज मुल्तान में पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान ग्रीन्स के दरमियान खेला जाएगा।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

कुछ आपकी सेहत की, कुछ घरदारी की, कुछ हाल अहवाल की, कुछ मौसम की और कुछ मौसम की तरह बदलते लोगों की। समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना आप जी? बिल्कुल। तो आपने हो जाना है हमारे साथ शामिल। तो दी कॉमेंट्स एफ एम 101 के ऑफिशियल पेज पर जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट कीजिएगा और कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। इसके साथ साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं मैसेज के जरिए, और मैसेज करने के लिए आपने जाना है मोबाइल की राइट ऑप्शन में 101 स्पेस, नाम पे कमेंट सेंड कर देना 4471 पे, और कमेंट करना है आपने एफएम 101 लाहौर की जो पोस्ट अपडेट कर दी है मैंने। वैसे आज ना अपनी पोस्ट चेंज की है, चेक करें हाँ ज़रा, ये मेरी अपनी की तख्लीककारी है। अच्छा मैं समझती हूँ, जो समझती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इससे पहले जो है ना वो ये कदम चलाते हैं कलाम, कलाम से वापस आते हैं आगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या समझती हूँ। मैं समझती हूँ एआई जितना मर्जी सयाना हो जाए, इंसान से बढ़ के सयाना नहीं है। पता नहीं मैं उससे एक पोस्ट बनवाने के लिए बैठ गई, उसने मुझे कोई 36 चीज़ें जो है ना वो ख़राब करके, कभी कुछ लिख दे, कभी कुछ लिख दे, कभी कुछ लिख दे। एट दी एंड मुझे समझ नहीं आई कि ये जो मैं अपनी तरफ से बड़ी सयानी बन के मैंने पोस्टर अपडेट कर दिया, पोस्टर अपडेट करके मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया। आरजे निमरा, हमारी बहुत ही प्यारी सी आरजे, मुझे कमेंट करके कहती हैं मेरी इनबॉक्स में, मुझे कहती हैं शफीक का क्यू बड़ा है। ओए होए होए होए होए, मैं कह नहीं, मैं सियानी, मैं भी सियानी, मैं कह यार स्टाइल स्टाइल, मैंने कहा इट्स कॉल्ड स्टाइल यू नो। ओके जी, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबैर शफीक। क्यों बड़ा होए या छोटा होए, है तो क्यों है ना। स्टिक अराउंड जी, 0422111001 डायलिंग नंबर है हमारा।

ऐसा होता है कि हम जैसे बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमारे साथ मौजूद नहीं होते, लेकिन अक्सर औकात ये भी कहा जाता है कि ताल्लुक का पता तब चलता है जब वो ताल्लुक ख़त्म हो चुका हो, बिकॉज आपके साथ रहते हुए आपका जो दुश्मन होता है ना वो बुरा तरीन इंसान होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब ताल्लुक ख़त्म हो जाता है तब ऐसी ऐसी बातें फिर सामने आती हैं। एक गल्लां चंगियां बिल्कुल नहीं होंदियां, इस पे फाइन लगते होते हैं। और ताल्लुक की जहां हम बात करते हैं, आज हम ताल्लुक के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो लोग जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा एक ताल्लुक होता है और जब वो ताल्लुक खत्म हो जाता है और फिर बहुत सारी बातें होती हैं तो वहां आप क्या करते हैं, ये मैंने आपसे पूछने का बताने का तरीका बहुत ही आसान है। जाने अपने मोबाइल की राइट ऑप्शन में दीजिएगा, लिखिएगा नाम स्पेस अपना पैगाम और सेंड कर दीजिएगा 4471। आज हमारे साथ एक अदद मेहमान भी मौजूद होंगे, इस गाने के बाद उनको भी शामिल करेंगे। आपकी सेहत के हवाले से बहुत सारी बातचीत उनसे करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो मौसम है, जैसे मैंने जिसका जिक्र स्टार्ट में किया, मैंने कहा कि ये नमी वाला जो मौसम है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का बाइस बनता है, ख़ासकर लाहौर शहर में, या अगर आप कंजस्टेड शहरों की बात करें तो वहाँ छोटे छोटे घर होते हैं। अब छोटे छोटे घरों में जब धूप नहीं निकलती भी और धूप निकल भी रही होती है तो वहाँ नमी रहती है, बिकॉज़ वहाँ तक धूप नहीं पहुँचती, बहुत सारे मसले मसाइल। और इस मौसम में जो है ना वो पानी से रिलेट करते बहुत सारे मसले होते हैं, बिकॉज़ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जहाँ पे किया जा रहा होता है वहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस नहीं किए जा रहे होते, तो उनसे पूछेंगे डेफिनेटली कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। लेकिन इस सब के लिए आपने रहना है हमारे साथ। यहाँ पे एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक और इसके बाद वापस आती हूँ, स्टिक अराउंड 04211100101 आवर डायलिंग नंबर। मुकाबेनु करके है ना आपका फेवरेट। अब जिन जिन का ये फेवरेट है ना अपने पे लगा लें, मुझे ये नहीं कहना कि मेरे नाम ये गाना आप तमाम के लिए और स्पेशली इजाज़ साहब आपके लिए। मैनी हैप्पी रिटर्न्स।

वेलकम बैक जी, दिस इज एफएम 101.5 लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। और लेडीज लाउंज में हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से, बात कर रहे थे उन लोगों के हवाले से जो मौसम की तरह बदल जाते हैं, और जब बदल जाते हैं तो इतना बदल जाते हैं कि जिंदगी में आपको समझ नहीं आती कि यार ये वो इंसान है जिसके साथ आपने इतनी अच्छाइयां की, ये वो इंसान है जिसके साथ जिंदगी में इतने पल अच्छे गुजारे, इतनी आउटिंगें की, इतना खाना पीना खाया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि जब लोग बदलते हैं तो इस कदर बदल जाते हैं कि उनके चेहरे भी बदल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी तो मैं कह रही थी यार बिना वजह के छोड़ने वालों को ना, जो बिना वजह छोड़ देते हैं आपको, और एक वक्त के पास जब बाद जब वो वापस आते हैं तो तब वो सामने भी खड़े हो ना तो वो नजर नहीं आते, जितना मर्जी वो बोले। और वो इंसान होते हैं जिनके बगैर कभी आप, जिनकी एक आवाज पे आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, और फिर वो आपके सामने खड़े होकर आपको आवाजें देते रहेंगे, आपको नजर नहीं आ रहे होते। ये कसूर आपका होता है, ये कसूर उन लोगों का होता है, ये मुझे आपने बताना है। हम बात कर रहे थे, हमारे साथ एक अदद मेहमान भी मौजूद हैं तो उनका इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं।

हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर हकीम सैफुल्ला खान लोधी, इंटरनेशनल हर्बल फिजिशियन। आज हमने बस उनको बुला लिया और उन्हें कहा कि हमें टिप्स बताएं, हमें बताएं कि इस मौसम में हम अपने आप को कैसे एनर्जेटिक रख सकते हैं, डायरिया से खुद को कैसे बचा सकते हैं और कुछ घरेलू चीजें जो कि हमें बड़ी ही मुश्किल से पता चलती हैं। तो उनका वेलकम कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।

यहाँ पे एक अदद गाने की तरफ हमने बढ़ना है और फिर जो है ना वो मैं आपको उनसे मुखातिब करवाती हूँ. कुछ कहते हैं ना इम्पोर्टेंट, कुछ बड़े ही ख़ास मेहमान जो होते हैं ना उन तक पहुँचने के लिए कुछ हर्डल्स को अबूर करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि ऐसी ही चीज़ें हैं कुछ. लेकिन एक अदद हम गाना लगाते हैं और फिर हम वापस आते हैं, वापस आके उनसे बात करते हैं. हमारे साथ रहिएगा. 0422111001 डायलिंग नंबर है. स्टिक अराउंड.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: वेलकम बैक जी, दिस इज FM 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबिया शफीक, 11:57, और आज हमारे साथ मौजूद है हकीम सैफुल्ला खान लोधी साहब। और हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो वक्त कम है और मैं चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है ना वो आप तक पहुँचा दूँ मैं। हकीम साहब, एक मिनट अभी हमारे पास है और उसके बाद हम न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। आजकल के मौसम में ना एक और बड़ा मसला है, वो है हेयर फॉल, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। वजह क्या है वैसे?
2: हेयर फॉल इसलिए होते हैं कि मौसम में, जैसे मैंने बताया, नमी बहुत ज्यादा होती है, तो ये चीज है कि जब देखें अमूमन लोगों के ना पसीना आया होता है, पसीना आता है, फिर वो उसी तरह से जो है ना, बाज़ लोग नहाते कम हैं, यानी सर कम धोते हैं,
1: स्कैब जो है ना,
2: स्कैब करते हैं, फिर वो ये है कि जब पसीना आता है तो किसी भी वो ना उसी तरह से ही रात को अमूमन लोग सोते हुए तेल लगा लेते हैं,
1: ठीक,
2: वो पसीने वाले बालों में वो जब तेल ब्लॉक हो जाते हैं, उसको सही डाइट नहीं मिलती है।
1: ठीक
2: है ना, जैसे इंसान को हेल्दी डाइट की जरूरत है, वो सेहतमंद होता है, इसी तरह से बालों को भी जो है ना वो हेल्दी डाइट की जरूरत होती है,
1: ठीक है।
2: तो जब उन्हें हेल्दी डाइट नहीं मिलती तो फिर वो जो है ना इस तरह से उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं।
1: तो इससे बचने के लिए क्या स्कैल्प को साफ रखना चाहिए?
2: सफाई सुथराई तो बिल्कुल होनी चाहिए, इसका तो खास ख्याल रखना चाहिए। और जब भी बालों में पसीना आए और आप जब भी शावर लें तो सर को अच्छी तरह से धोएं, और जब आप जाहिर बात है कि साबुन का इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म के ऊपर, तो जो भी आप शैम्पू या लगाना चाहें या साबुन वगैरह, जो साबुन तो खैर नहीं लगाना चाहिए सर पे, लेकिन जो शैम्पू जो भी आपको सूट करता है आप उसको लगाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ये नहीं करना कि सिर्फ जिस्म के ऊपर साबुन लगा लिया और जो है ना सर को उसी तरह से छोड़ दिया।
1: अच्छी बात, आप हमारे साथ रहेंगे हकीम साहब, लेकिन यहाँ भी हमें एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना है, फिर हम वापस आएंगे और आके मज़ीद बात करेंगे। सो स्टिक अराउंड।
3: कमिंग अप नेक्स्ट, 101 न्यूज़ हेडलाइंस, न्यूज़ हेडलाइंस।
4: दिन के 12 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, मनाजिर हुसैन से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा साल हज के लिए तमाम जरूरी इंतजामात बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की है। वजीर खजाना के मुशीर ने कहा है कि सिर्फ 2 साल में पाकिस्तान के बजट में शफाफियत 50% बेहतर हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज्यारत, हरनाई और सोराब के इलाकों में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाईओं में 9 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और नेशनल चैंपियंस क्रिकेट कप टूर्नामेंट का फाइनल आज मुल्तान में पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान ग्रीन्स के दरमियान खेला जाएगा।
5: दिस इज FM 101।
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: वेलकम बैक, दिस इज FM 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबिया शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। और लेडीज लाउंज में हमारे साथ हर्बल एक्सपर्ट मौजूद थे और हमने कुछ बातें उनसे पूछी, आपसे रिलेट करते बहुत सारे सवालात किए, होपफुली आपको पसंद आए होंगे। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट कीजिएगा, कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। और इसके साथ साथ जो है ना, वो आज का टॉपिक आपके साथ थोड़ा सा मैं डिस्कस करती चलूँ, मैं कह रही थी कि

आप मुझे ये बताएंगे कि वो लोग जो आपके साथ रहते हुए रहते हैं, आपके साथ एक वक्त तक उनकी दोस्ती होती है, बहुत अच्छा ताल्लुक होता है, और फिर उसके बाद एकदम से अनजान बन जाते हैं उन लोगों के साथ, आपका बिहेव कैसा होता है? क्या आगे सामने वाला बदल गया तो आप भी बदल जाते हैं, या फिर आप लिहाज रख लेते हैं? आपको रिश्तों का लिहाज रखना आता है, ये आपने मुझे बताना है। बताने का तरीका बहुत ही आसान है, जाना है अपने मोबाइल की राइट ऑप्शन में 101 स्पेस, नाम पे कमेंट सेंड कर देना है उसको। डबल 4 7 1 पे एक अदद गाना और फिर वापस आते हैं।

0: क्या ख्याल है, कॉल लें। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक
0: अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब आप बताइएगा।
1: बस जी आपकी दुआएं, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो होता है आपका
0: शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि जब लोग बदल जाते हैं तो फिर बदलना चाहिए साथ में या खामोश हो जाना चाहिए?
1: देखिए जी, मैं तो ये आजकल जो दौर चल रहा है ना, जब लोग बदल जाए आप भी बदल जाए।
0: डन हो गया बहुत अच्छी बात की आपने।
1: जरूरी नहीं कि उसके मगर मगर जाए वो आगे पारा, मतलब कि बात ही ना सुने तो ये बात नहीं है। जो पीछे हटता है हट जाना चाहिए, इसका वक्त भी है आजकल।
0: ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। सुनिए ये खूबसूरत अटैक, वापस आते हैं 12:42, बात कर रहे हैं लोगों के साथ बदल जाना चाहिए। शनासा चेहरे जब गुम जाते हैं तो सामने भी आए तो नजर नहीं आते, ऐसा क्यों होता है?

0: वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियोज में जुबिया शफीक, 12:46। हमारे साथ लाइन पे कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
0: प्यारी हूँ।
1: अच्छा, वो तो मुझे पता है, आपकी तबीयत कैसी है, क्या हाल चाल है आपके?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ।
1: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज की टॉपिक में मैं ये बात करना चाहूंगी कि ना, जैसे आप कह रहे हो ना कि पहले ताल्लुकात होते हैं, जो मतलब फ्रेंड है, तो बस बाद में जब वो अनफ्रेंड हो जाता है तो फिर हमारी क्या सोच होती है इसको लेके। तो मेरी तो कोई सोच ही नहीं होती, मीन्स कि मैं इतनी भुलक करूं कि जब
0: सोचती नहीं हूं ऐसे लोगों के बारे में
1: सोचती नहीं हूँ, मेरा दिमाग ही इतना छोटा सा है, बस कम ही है, मुझे जो है ना वो इतना मैं सोच ही नहीं सकती अपने दिमाग से ना। तो जब मेरी आंखों के सामने से ओझल होता है, बस मुझे भूल जाता है। तो जब तक कोई मेरे साथ हो, कॉन्टेक्ट में हो, मुझे याद रहता है। फिर एक दफा पूछ लेती हूँ कि भाई कहाँ हो, जिंदा हो, मर गई हो, क्या हाल हवाल बता दो, बट वो रिस्पॉन्स ना आए, ना कोई ठीक से बात करे, तो फिर मैं भूल जाती हूँ।
0: ठीक है,
1: तो ये सीन है मेरा, तो ये सीन है, मैं भूल ही जाती, फिर बात क्या करनी उसके पीछे के वो ऐसी थी। कभी कभी याद आ जाता है, अगर कोई अच्छा दोस्त हो ना, तो फिर इंसान सोचता है यार वो कहाँ चली गई, उसको बात ही हम करते हैं, आप भी करती होंगी कॉन्टेक्ट के, यार किधर चली गई वो, इतनी अच्छी दोस्त थी वो, तो हम
0: अचानक से जो गायब हो जाते हैं।
1: हाँ, वो तो सारे पूछते हैं। तो फिर अगर कोई आपसे दूर होना चाह रहा हो ना, कि अब आपसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? फिर तो यही कहते हैं हमें भी चुप कर जाना चाहिए, खामोश रह, मतलब चुप कर देना चाहिए कि ठीक है अगर वो जा रहा है तो फिर ठीक है जाए, उसकी मर्जी, हम भी साइड पे हट जाए, यही तरीका ठीक होता है, बजाय इसके कि आप उसकी टांगे पकड़ लो कि भाई मुझे नहीं छोड़ के जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, दिल नहीं धड़केगा, दिल तो धड़कता है, सांसें भी चल रही है भाई, सब कुछ होगा, वैसे ही होगा, तो जाने दो।
0: बहुत शुक्रिया बिस्मा, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी आपका कॉल करने का शुक्रिया। बिस्मा थी हमारे साथ, बात हम कर रहे हैं जी, आपके कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे साथी जो एक वक्त आपके साथ रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि जब दोस्त दुश्मनी भी उतरता है ना, वो बहुत ख़तरनाक दुश्मन होता है, बिकॉज़ उसे आपकी सब चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि आपको किस चीज़ से कितनी तकलीफ़ होगी, इसलिए वो उन सारी चीज़ों को हिट करता है। ऐसे लोग जब ताल्लुक में होते हैं और जब ताल्लुक ख़त्म होता है और फिर इस तरह की हरकतों पे उतरते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, क्या मुकाबला करना चाहिए, या खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्या रिस्पांस करना चाहिए? अगर दोनों साइड से चीज़ें एक जैसी चलेंगी तो फिर कैसे चलेंगी, इस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम 101 के सभी सुनने वालों को, मेरी तरफ से मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम जुबिया शफी, कैसी हो? ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताइएगा।
2: जुबिया शफी जी, शमीमापी बोल रही हूँ, इसरा लाहौर से।
0: जी शमीमापी,
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आ जाए आपके टॉपिक की तरफ, के वो क्या, किसी ने कहा है कि हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, अगर वो बदल जाते तो बदलने दो, कोई बात नहीं, उसके पीछे पीछे मत जाओ, बिल्कुल भी ना जाओ। हाँ जी, तो ऐसा मैं तो ऐसे ही कर दी कि जो बदलते हैं तो उन्हें बदलने दो, कोई बात नहीं, हर इंसान जो है ना वो रह सकता है।
0: सही कह रही हैं,
2: बहुत अच्छा शो, हमेशा की तरह जबरदस्त शो, बहुत ही अच्छा।
0: बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: किसी ने कोई सदाबहार गाना प्ले कर दें तो
0: ओके हो गया। मैं कह देती
2: हूं, मैडम नूरजहां का हो जाएगा, मैडम नूरजहां का,
0: मैडम नूरजहां का मैं प्ले कर चुकी जी,
2: चलो
0: फिर भी कोशिश करती
2: हूं। बस ये है कि इसको फरी को मेजर से अस्सलाम वालेकुम, तारिक भाई भी सुन रहे हैं उनको, और अनिला जी को
0: बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बात कर रहे हैं हम उन ताल्लुकात के हवाले से,
3: करूं इंतजार फोन तुझे करूं,
0: बदल जाते हैं
3: पर तू खफा और मैं यहां।
0: मुझे लगता है जहां आप एक वक्त तक बहुत अच्छे रहे हों, बहुत अच्छा वक्त गुजरा हो, तो फिर उन लम्हों का पास रखना चाहिए, उस वक्त का पास रखना चाहिए, उस रिश्ते का पास रखना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे फिर भी आपको एहतियात करना चाहिए, आपको ख्याल करना चाहिए, एटलीस्ट उस वक्त के लिए जिस वक्त में आप साथ में रहे, کہ اگر وہ اتنا برا تھا تو اتنا وقت آپ ساتھ کیوں تھے؟ دسو نا ذرا. سوال تو بنتا ہے. کچھ بیک ٹو بیک کالرز لوں گی.

0: Socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: relax in the dark.
1: Zeus,
0: yeah, back to

0: Netherlands. Prime Minister has directed authorities concerned to ensure effective measures for provision of employment opportunities to the youth. Deputy Prime Minister, dialogue and diplomacy remain only way forward for promoting regional peace and stability. In Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, Indian forces have launched cordon and search operations at several places in different districts. Final of National Champions Cup cricket tournament between Pakistan Gold and Pakistan Greens is underway in Multan.
1: Hi, this is FM 101.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइस तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: Tune in to one above, FM 101.
7: सुनते रहिए FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी। न पेट्रोल का खर्चा, न आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mitti, Bichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

السلام عليكم والسلام عليكم اف 101. If you want to Pakistan Lahore se janab mujhe kehte hain aapki RJ aapki host aapki do Shiba Malik aapke saath aur Lahore on hai. और 18 अगस्त 2026 को भी लाहौर ऑन है ऑब्वियसली. यानी हम लास्ट वीक भी शो करने के लिए आए थे और अभी भी शो करने के लिए आए हैं. सो 18 अगस्त 2026 और 5:07 हो चुके हैं. मेरा और आपका साथ रहने वाला है आज की इस जर्नी में पूरे 7 बजे तक. एंड आई जस्ट होप एंड बिलीव आप बिल्कुल ठीक ठाक है. पूरा एक हफ्ता जो है आपका बड़ा ज़बरदस्त रहा होगा, सुपर डुपर रहा होगा. आई जस्ट होप सो. और कहते हैं अच्छे की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए ताकि अच्छा ही ज़िंदगी में हो. हम तो बस यही कहते रहते हैं. हमारा वो कहते हैं ना, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे. तो हमारा पैगाम जो है वो पॉजिटिविटी है, अच्छा सोचते रहना है जहाँ तक पहुंचे, जिन जिन समाजों तक पहुंचे. एनीवेज शो में शामिल आप हो सकते हैं 4471 पर मैसेज करेंगे. फेसबुक हैंडल है facebook.com/fm101lahore और इसके साथ साथ www.radio.gov.pk/livestreaming के थ्रू भी आप शो में शामिल हो सकते हैं. यू आर वेलकम. खुशामदी जी आयन अहलन व सहलन मरहबा पहर रागले ते भली करी आया.

राइट ओके सो हैव यू गॉट अ बिगिन शो. लेकिन आज इतनी सारी चीज़ें हैं, आज बड़े अच्छे अच्छे से दिन हैं और ख़ासम खास दिन हैं, तो आज का शो बड़ा स्पेशल है. सो जिन लोगों ने मिस किया उन्होंने मिस ही किया. आपको पता है मिस करते हैं तो फिर इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, आपका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता. ओके जी, शो में मिक्स म्यूजिक रहेगा, नए पुराने गाने, वर्ल्ड डेज देखेंगे और साथ साथ देखेंगे इंटरनेशनल डेज क्या है, फैक्ट चेक देखेंगे, स्पोर्ट्स को भी एक नज़र देख ही लेंगे, साथ साथ जो है टॉप ट्रेंडिंग में क्या कुछ चल रहा है वो भी सब कुछ देखेंगे. तो सारा कुछ है, लाहौर ऑन है विद आरजे शिवा वाले. कोई सुन रहा होगा बस बस इतना कुछ ही है, नहीं नहीं और भी बहुत कुछ है. और जी साथ साथ चाय पानी चलती रहेगी, लाइफस्टाइल, फैक्ट चेक, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल न्यूज, एवरीथिंग. ओके सो वो सारा कुछ शो में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ लेट्स बिगिन आवर शो और यहाँ से ही शुरू करेंगे. आपको पता है ना मेरा फेवरेट है. आहा.

Spaces, welcome back. So, लाहौर ऑन है विद आरजे शिबा मलिक और साथ साथ जो है हम लोग चाय की तैयारी कर रहे थे. ठीक है, अच्छा आप लोगों ने एक चीज नोट नहीं किया है कि आज बीजीएम ज्यादा नहीं प्ले हुआ है ना. आज है जनाब 18th of August और आज के दिन के हवाले से क्या खास है वो भी देख लेते हैं. जस्ट हैव अ लुक ऑन आज कौन से इंटरनेशनल डेज हैं, वर्ल्ड डेज हैं. व्हाई आई एम सीइंग दैट, क्यों जुलाई का महीना बार बार सामने आ रहा है. यू आर टॉकिंग अबाउट अगस्त. अच्छा जी, अगस्त की बात कर रहे हैं तो आज बड़ा खास सा दिन है और वो ये है कि नेवर गिव अप डे है आज. कभी भी इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए. टॉपिक आज इसी से रिलेटेड ही रहने वाला है. सो आज का शो इम्पॉर्टेंट है. उसके साथ साथ जो और भी ख़ास चीज़ें हैं जो आज के दिन के हवाले से, कहीं ना कहीं दुनिया में ना नेशनल कपल्स डे मनाया जा रहा है. इमेजिन. एनीवेज, नेवर गिव अप डे है. उसके साथ साथ इंटरनेशनल डिलीवरी ड्राइवर्स एप्रिसिएशन डे है, ये भी बहुत खास दिन है. उसके साथ साथ वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च डे है. तीनों आज के दिन बड़ी खास जो है डिस्कशंस रहेंगी आज के शो में. और ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेवर गिव अप डे, इसी से रिलेटेड होने वाला है टॉपिक. और डिलीवरी ड्राइवर्स जो हैं आज, आई वुड प्रेफर कि अगर वो लोग शो में शामिल हों और अगर वो सुन रहे हों अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें. लाइव कॉल्स लेंगे आज हम डेफिनेटली. सो दैट्स इट अबाउट टुडे, यही है खासम खास. अच्छा, दो गाने प्ले करने के बाद जो है मैं नॉर्मली मैसेजेस शामिल करती हूँ. तो जो इतना रोला ना डाला करो कि भूल जाएँ. 10 मैसेज आए हुए हैं, पता नहीं अब वो किसके मैसेज हैं. भूल जाएँ शिबा मलिक मैसेज पढ़ना, भूल जाएँ. हाँ मैं भूल गई, मेरी याददाश्त चली गई है. अब मैंने नहीं पढ़ने मैसेजेस. एनीवेज, एवरी गो विद दिस म्यूजिक. स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग. आरजे शिबा मलिक, FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर.

I was really wondering कि मैंने ये गाना क्यों प्ले किया है. मैं खुद से पूछ रही थी कि why I just playing that song. फिर मुझे याद आया कि ये गाना अच्छा चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है. 11 दिन पहले ये गाना रिलीज हुआ है. अब वो गाना जो है अगर रिलीज हो गया है तो हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और खान साहब का है और शफीउल्लाह का है गाना. उनका म्यूज़िक है, एक बंदे का म्यूज़िक है, एक ने गाया है, तो दोनों ही जो हैं लेजेंड सिंगर्स हैं, तो क्यों ना हम इनका गाना प्ले क्यों ना करते. अच्छा जी, रोला इतना डाला हुआ है 4471 वालों ने, तो डेफिनेटली आई हैव टू रीड देयर मैसेजेस. अब जो हैं उनके मैसेजेस शो में शामिल करने जा रही हूँ. अच्छा, माइक की मुझे समझ नहीं आती है, पता नहीं इसको क्या ही मसला हो रहा है. एनीवेज, जब मेरा शो स्टार्ट होता है ना कुछ तो होना ही होता है. 5:20 और जो लोग जो हैं शो में अभी तक शामिल नहीं हुए, यू आर वेलकम इन लाहौर ऑन है. सो पहले इसको तो मैं कर लूँ साइलेंट. अच्छा जी, फैक्ट चेक टॉप ट्रेंडिंग नहीं, उससे पहले मैसेजेस देखेंगे. ठीक है जी. अच्छा, जो मैं बता रही हूँ कि 10 मैसेजेस आए हैं, लास्ट वाले मैसेज में लिखा हुआ है, उसने एहतशाम ने मैसेज किए हैं, यानी सेइंग के अस्सलाम वालेकुम शिबा जी, हा हा हा, ये मैं ही था जिसने वो मैसेजेस किए हैं जिसमें नाम नहीं लिखा, मैं सिर्फ तंग कर रहा था. शुक्र करो ये वाले मैसेज में तुमने बता दिया कि ये तुम थे, वरना वो 10 भी जाने थे और ये वाला मैसेज भी जाना था अगर नाम ना लिखते. एनीवेज, थैंक यू एहतशाम फॉर बीइंग इन शो. फिर उसके बाद कौन है, बतूल ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम शिबा मलिक साहिबा, ओ हो हो कैसी हैं आप, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ. आई हुआ कुछ तो है. अच्छा जी, तो अगर आप कहें तो आपको नॉवल लिख दूँ. मुझे तुम्हारे मैसेज से पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर तुम यहाँ पे पटाखा छोड़ने वाली हो, ऐसे नहीं होता. तो हजूरे वाला हिदमत हाजिर, कुछ तो कीजिए, यहाँ पे बड़ा सा नॉवल लिख भेजिए, बता क्या हुआ है, सीन क्या है. जरियोन ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम शिबा मलिक, अगर आप इजाज़त दें, मौसम का तकाजा ये कहता है कि थोड़ी सी शायरी की जाए और आपकी आवाज़ में की जाए और हम उसको रिकॉर्ड करें और स्टेटस पे लगाएं. ये मौसम का तकाजा, मैं कुछ नहीं कह रहा. हाँ, और शिबा मलिक ये कहती, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले तेरे अरमान ज़रियोन, लेकिन फिर भी कम निकले. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं शिबा मलिक. कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ ना कहना, सिर्फ दुआएं दे देना, दिल यही चाहता है, और तुम्हारे लिए कभी कभी इतना ही प्यार दिल में आता है. ओह हाउ स्वीट, इतना प्यारा मैसेज. अगर आप नाम भी लिख देते या लिख देती तो अच्छा ही नहीं रहता. अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं कौन सी जुबान में आप लोगों को बोल रही हूँ. आई मीन कौन सी, पंजाबी में बोलूँ, उर्दू में, इंग्लिश में, कि जब आप लोग 4471 पे मैसेज करते हैं, सो प्लीज उसमें अपना नाम जरूर लिखा करें. पैसे लगा के आप लोग मैसेजेस कर रहे होते तो क्या फ़ायदा कि अगर आप इतने मैसेजेस करें और मैं वो पढ़ूं भी ना, तो मुझे मज़ा नहीं आता. नाम के साथ मैसेज करें अच्छा लगता है. क्या आपके मैसेजेस इस काबिल नहीं होते कि आप उसको ऑन करें. और ये जो मैंने प्लीज़ बोला ना, उससे मुझे वो याद आ गया जो इतनी ट्रेंडिंग पे चली है ना वीडियो, प्लीज़.

Alrighty, so हम बात कर रहे हैं कि never give up, कभी भी जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी ये नहीं सोच लेना चाहिए कि यार अब इससे आगे क्या, बस इतना ही था, बस हो गई है मेरी और लाइफ यहीं पे ख़त्म हो गई है। कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर हार नहीं मान लेनी चाहिए, ज़िंदगी जो है इसी तरह चलती रहेगी। और आपको पता है कि परेशानियाँ, मुश्किलें, मुसीबतें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में खाने में नमक मिर्च की तरह हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। और हम जो हैं, मैं अक्सर कहती होती हूँ कि इमेजिन द डे व्हेन यू डोंट हैव प्रॉब्लम्स, व्हेन यू डोंट हैव ट्रबल्स, व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, यू नो, चैलेंजिंग कुछ भी नहीं है, और हफ्ता पूरा उस तरह गुजरे, तो यकीन मानिए इंसानी फितरत ये कहती है कि हम बोर हो जाएंगे। हम लोगों को हैपनिंग की ज़रूरत है, चेंज अच्छा लगता होता है, सब ऐसी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं जो हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो अगर ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें रहती हैं तो ही ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है, फिर ही हम शायद रब की ज़ात को याद कर रहे होते हैं, फिर ही शायद हमें अपने पराई की समझ आ रही होती है, रिश्ते जो हैं वो निखर के सामने आ जाते हैं। जब बिखरते हैं, चीज़ें बिखरती हैं, तभी निखर के आपके सामने आती है कि अब आगे क्या। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में जो है वो गिव अप नहीं करना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा, लाइव कॉल्स लेंगे हम, उसके साथ साथ जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च डे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, और लकीली अक्टूबर में ऑफकोर्स जो है वो स्पेशल डे मनाया जाता है और पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, बिकॉज दिस इज़ गेटिंग टू मच नाउ। डिटेल इसके बारे में बात करेंगे, आर्टिकल जो हैं वो भी शामिल करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान ने इसके बारे में क्या क्या काम किए हैं, सीएम साहिबा ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़वातीन के लिए की हैं, तो वो भी उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। बट राइट नाउ हैव वी गोना गो विद दैट सॉन्ग और फिर शामिल होते हैं वापस जी। इसके बाद फेसबुक के मैसेजेस शामिल करेंगे, आज मुझे लगता है कि 4471 वाले जो है ना बड़े खुश होंगे, बिकॉज उनके मैसेजेस टाइम पे पढ़े जा चुके हैं ना, और मैनू बहुत ठंड लग रही है, उफ तौबा।

ऑलराइट डिलीशियस, वेलकम बैक. लाहौर ऑन है विद आरजी शिबा मलिक. और जो है हम लोग बात कर रहे थे कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. व्हेन डिड यू लास्ट टाइम गिव अप? आप अपनी जिंदगी में वो कौन सा दिन था, कौन सा लम्हा था जब आप अपनी जिंदगी पे गिव अप कर गए, जब आप हार मान गए, जब आपने ये बोला मेरी बस हो गई, बस अब इससे आगे कुछ भी नहीं है. कभी कभी काम ज्यादा होता है. रजा बैठा हुआ सामने, रजा कह रहा है मेरी आज बस हो गई, क्योंकि उससे पहले अभी वो बता ही रहा था कि आज बहुत काम था. तो नहीं, काम वाली नहीं, लिटरली इमोशनली जब आप इतने ज्यादा ड्रेन हो जाते हैं, जब आपको लग रहा होता है कि यार एवरीबडी लेफ्ट यू, सब कुछ खत्म हो गया है, कोई आपको छोड़ के चला गया है, जिंदगी के आगे फुल स्टॉप लग गया. या आपने कभी किसी के सामने बहुत सारे वो किए होते हैं, मतलब शायद टाइम गुजारा होता है, और फिर उसके बाद जो है अगर इस टाइम हम लाइव जा रहे होते तो रजा बड़ा मजा आना होता, वीडियो भी जा रही होनी थी हमारी साथ साथ. एनीवेज, तो वो कौन सा लास्ट टाइम था जब आपको लगा कि यार बस हो गई है मेरी, अब मैं हार मान ली, और फिर उसके बाद किस एक्सपीरियंस की वजह से, किस वजह से, कौन सी ऐसी वजह थी जब आपको लगा कि नई जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट की जा सकती है? तो ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक. तो आप लोग आ सकते हैं लाइव कॉल्स, अभी नहीं, 6 बजे के बाद.

डिलीशियस वेलकम बैक लाहौर ऑन है विदार जो शिवा मलिक और आप लोगों को बताते चलें कि मैसेजेस आ रहे हैं. क्या बात है, ज़रियोन कह रहा है कि मैं जो हूँ शिवा जिंदगी में कब गिव अप किया है, शायद अभी कल ही किया है मैंने गिव अप. कल ऐसा क्या हो गया? अच्छा, मज़ा ज़्यादा तब आएगा जब आप लोग अपना ना मुझे ना वाकया भी बताएंगे, मुझे शेयर करेंगे कि ये हुआ था तो ये हुआ है और ये हुआ है तो ऐसे होगा. ठीक है,

अच्छा जी, महरीन भी इस वक्त जो है वो शो सुन रही है और महरीन कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम विद बेस्ट विशेस, थैंक यू सो वेरी मच, आपको भी खुश आमदीद, वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच महरीन फॉर बीइंग इन शो। ओके अच्छा जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। आतिफ असलम का गाना याद आ गया। अच्छा जी हाँ, मुंदरी ये गाना मैं ढूंढ रही थी। ओके आई होप दैट इज सेम सॉन्ग दैट आई वाज लुकिंग फॉर। ओके यस द सेम सॉन्ग, हियर वी गो विद इट।

वाह मुंदरी है ना मजे का, बड़ा ही मजे का है कि ये सुन के दिल होता है यार ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था। बाकी गाने जो टप्पे हैं वो सात सात आठ आठ मिनट के होते हैं, तो आई जस्ट विश के थोड़ा सा और लंबा होता। अताउल्लाह खान और आसिफ का जो है वो उन्होंने अपनी तरफ से ट्रिब्यूट दिया था, एंड द स्टोरी ऑफ दैट सॉन्ग वॉज के जब इन्होंने गाना सुनाया तो अताउल्लाह साहब ने कहा कि आई विल नॉट इवन टेक अ मनी, ये इतना मज़े का गाना है कि मैं इसके पैसे भी नहीं लूँगा, तो उन्होंने ऐसे ही गाया था। बड़े लोगों की बड़ी बातें, यू नो। अच्छा जी, इट्स वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च डे, बहुत ही ख़ास दिन है। एक टाइम था कि लोग ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मर जाते थे और किसी को पता ही नहीं चलता था कि हुआ क्या है। फिर वक्त बदले, हालात बदले, साइंस ने तरक्की की, फिर पता चला कि ये ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और फिर ग्रेजुअली जो हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट हुई, एडवांस हुई, और अब जाके जो हैं हम एक जिसको कहते हैं ना ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट भी है, इसका इलाज भी है, लेकिन अगर टाइमली पता चल जाए तो। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही देखा जाए कि somehow यू नो दैट वाज वेरी इजी वे टू मार्क ब्रेस्ट कैंसर जो था वो, उसको मार्क करना आसान इस तरह हो गया है कि एवरी सिक्स मंथ आप अपने टेस्ट कराएं, और इफ़ यू आर अ मदर तो फिर तो ज़रूर टेस्ट कराएं, ठीक है। और अगर आपने फीड करवाया है और आपके बेबीज़ हैं और फिर भी एवरी सिक्स मंथ आपको टेस्ट कराने चाहिए। प्लस जो है अगर आप मदर हैं, आपने फीड नहीं करवाया, तो एक रिसर्च के मुताबिक, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च, जब उन्होंने रिसर्च किया था तो एक रिसर्च के मुताबिक दे आर सेइंग कि जो मदर जो हैं फीड नहीं कराती हैं उनके साथ जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं इस तरह के। द हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर दैट वेरी सिंपल जो है वो जर्नल के जस्ट ब्रिंगिंग द अवेयरनेस टू पीपल के लोग जो हैं इसके बारे में सोचें, सीरियस हों और इस बीमारी को सीरियस लेना शुरू करें। थैंक्स टू ऑल दोज पीपल दैट दे आर विद, जिन्होंने कोशिश की, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, थैंक्स टू ऑल दोज पीपल, और जिन्होंने इस बीमारी को समझ के कहा कि नहीं ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ इन्होंने मसला नहीं समझा, बहुत बड़ा मसला समझा। सो ऑफ कोर्स ऑन दैट्स वाई, अच्छा वैसे तो ये स्टार्ट किया था 2021 से जो है डॉक्टर सुजैन, उन्होंने जो है वो फाउंडेशन ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च जो थी वो बनाई, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बकायदा जब रिसर्च अपनी कंप्लीट कर ली, फिर अपने जो उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को वो रिसर्च दिखाई, सो फाइनली जो प्रूव हुआ कि नहीं भाई इनकी रिसर्च इतनी ऑथेंटिक है कि उसके बारे में बात की जा सके, दुनिया को बताया जा सके, देन दे ब्रिंग यू नो वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च डे ऑन 18th of August। मार्च में उन्होंने वो रिसर्च की थी और डॉक्टर्स ने प्रेजेंट की थी सब जगहों पे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे, और अगस्त में जाके उन्होंने इसको प्रूव किया कि यस देयर शुड बी अ सेलिब्रेशन, देयर शुड बी अ डे व्हेन एवरीबॉडी इज यू नो टॉकिंग अबाउट दैट, दे आर ब्रिंगिंग सेमिनार्स, दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, सो दिस वुड बी द डे। सो यस इट्स अ वेरी बिग डे एंड इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट समथिंग दैट यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, इट्स ऑल अबाउट यू शुड नो द आप किस बॉडी के साथ हो क्या रहा है, और जितनी भी आप लोगों को मैंने रिसर्च बताई है जस्ट माइंड इट, कीप इट इन योर माइंड कि ज़िंदगी जो है वो यू विल गेट वंस ओनली, उसकी केयर करना, उसकी हिफाजत करना वो आपकी आपका फ़र्ज़ है, यू कान जस्ट लेट इट बी लाइक दैट, आप इसी तरह नहीं जाने दे सकते हो। अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है और ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है, और जो लोग इसकी कदर नहीं करते यकीन मानिए ज़िंदगी इतनी बुरी तरह उनको धोबी घाट की तरह धोती है ना कि लग समझ जाती है। एनीवेज वी गोना गो फॉर अ सॉन्ग, नहीं लेकिन कम आप लोगों के वो हैं मैसेजेस हैं वो पढ़ लेते हैं। फरहान कह रहा है नेवर गिव अप, इस टॉपिक पर मैं लाइव कॉल पर ही बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, बट अगर कॉल कर ट्राई करूँगा तो सारा शो मिस हो जाएगा बिकॉज आई हैव ओनली वन फोन। शायद पहले भी बताया था कि मैंने लास्ट टाइम गिव अप किया था जब मैं ओके ISSB में दोबारा रिकमेंड हुआ था, बट उसका उस बात को बहुत से चेंजेस आए लाइफ में, मैंने दोबारा मेहनत करना शुरू कर दी और अब जिस मुकाम पर हूँ मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने सीखा है और सिर्फ मेहनत करना नहीं छोड़ा, बाकी आपको डायरेक्शन का फैसला सोच समझ कर करना है, मुझे चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर सेइंग, टॉपिक हमारा ये है कि आप अपनी लाइफ में कब आपने गिव अप किया, व्हेन डिड यू रियली गिव अप योरसेल्फ लास्ट टाइम, कब अपने आप को आपने कहा बस यार मेरी बस हो चुकी है और आपने छोड़ दिया।
अपना अपनी लाइफ को कि यार छोड़ो, खाली वली वाला जो सीन था ना वो हो गया, और फिर उसके बाद नए सिरे से अपने आप को समेटा और चल पड़े। शिबा सॉन्ग प्ले कर दें, माया जे मैं कबूतरी हूँ, ओके ठीक है, न्यूज़ के बाद प्ले करेंगे। अच्छा आज रिक्वेस्ट होगी और आप लोगों की कॉल्स होंगी, सो स्टिक अराउंड और साथ रहिएगा शो में। यार ये क्या है, शिबा जी गिव अप किया था 3 साल पहले और मेरी स्टोरी तो सबको पता है। इजाज कह रहा है यस, इजाज तुम्हारी स्टोरी पता है। आई हैव ऑल्सो पुट द कवर फोटो ऑन प्रोफाइल, ओके नेवर गिव अप, ओके। जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स ही खूबसूरत बनाते हैं, वरना जिंदगी जीने का मज़ा ही नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा जी खावर भी शो में नहीं आया, खावर की पसंद के गाने लगे हैं, ओके तारिक भाई आप कैसे हैं, खावर आज भी नहीं आया, पता नहीं इनको क्या है। अच्छा और फिर इसके मैसेजेस आएंगे, मैम शो करना है नहीं करना है। एनीवेज लाहौर ऑन है विद आरजे शिबा मलिक, हियर वी गो विद द न्यूज ब्रेक, फिर वापस आते हैं, स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग। नेक्स्ट 101 न्यूज हेडलाइंस।

0: Hi, this is FM 101. 101. 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी। न पेट्रोल का खर्चा, न आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Once again, assalamu alaikum and good evening all of you. FM 101.2 Pakistan Lahore se mujhe kehte hain aapki RJ, aapki host, aapki dost Shiba Malik aapke saath. To aur Lahore on hai. हाँ जी, लाइव गोल्स हैं और साथ साथ जो है वो मैंने बोल दिया है कि हम रिक्वेस्ट भी आज प्ले करेंगे. सो टॉपिक हमारा ये है कि कब आपने अपनी ज़िंदगी में हार मान ली, कौन सा वक्त था जब आपने अपनी ज़िंदगी में हार मानी और फिर उसके बाद नए सिरे से खुद को समेटा और आगे बढ़े. ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जरियो, उनके हम शायरी करें और आप उसको रिकॉर्ड करें, बिल्कुल भी नहीं. मुझे बिल्कुल भी ये आइडिया पसंद नहीं आया. अच्छा चले ठीक है, ओके, हियर वी गो विद दिस. तारिक ने रिक्वेस्ट की थी इस गाने की, तो हियर वी गो विद दिस सॉन्ग.

welcome back. Okay, जी, so Lahore on है with RJ Shiva Malik and नहीं जी, यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही है, मैंने कन्फर्म कर लिया था. विंडो खोली, स्टूडियो में विंडो है, बाहर खुलती है, क्या बात है, वो नज़ारे कुछ और है. अच्छा, तो कोई बारिश नहीं यहाँ पे हो रही है. सो जहाँ पे बारिश हो रही है, हमारा दिल जलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप दिल जलता ही नहीं है. ठीक है, हाँ, आ गया खबर. खबर कह रहा है जी, मैं मदाब तस्लीमात, यहाँ पे तुम्हारी पसंद के गाने लग लग के ख़त्म हो गए, तुम अब आ रहे हो, सॉरी आज लेट हो गया. ऐसे ही होता है शिबा, सर्दी लग रही है, गर्मी कुवैत से भेज दूँ, उधर बहुत गर्मी है. भाई टेंशन ना लो, नादिर बिनिश को ढूंढने के लिए गया हुआ है, इसलिए दोनों ही गुम गए हैं. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, सब ठीक है, खुश रहा करें सारे. ओके राइट, ओके. तो खबर ये, जब मैं शो नहीं कर रही होती तब तुम्हें मुसीबत पड़ी होती है, मैसेजेस कर रहा होगा मैं मौत शो है या नहीं है, है या नहीं है. मैं ये सोच रही हूँ अगला शो मिस ही कर दूँ, खपते रहो ना ही बताऊँ ही ना. मैं जिंदगी में कब आपने गिव अप किया और कब जाके आपको लगा कि यार मेरी बस हो गई, अब इससे आगे कुछ नहीं. अच्छा, एहतशाम कह रहे हैं सही कहा शिबा, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों से बात करने के लिए इंसान जाता है और आगे से पता चलता है कि इससे बेहतर था वो बात ही ना करते. कुछ लोगों को बड़ी महारत होती है आपका मूड ख़राब करने में, बड़ी महारत होती है आपका अच्छा खासा हंसता बसता मूड ख़राब करने में, बड़ी महारत होती है, वो बड़े माहिर होते हैं इस काम में. बंदा कहता है फिटे मुंह, ना ही इनसे बात करते.

रिक्वेस्ट है और साथ साथ हम टॉपिक पे बात करेंगे, एक गाना प्ले करेंगे, उसके बाद लाइव कॉल जो है वो मैं स्टार्ट करूंगी। आपने जिंदगी में कब हार मानी, कब जाके आपको लगा कि यार मेरी बस हो गई है, कल आज परसों तरसों पिछले महीने एक साल पहले, व्हेन डिड यू रियली फील कि बस यार, और फिर उसके बाद नए सिरे से खुद को समेटा और शुरू की नई जिंदगी, कब सों तरसों पिछले महीने एक साल पहले, व्हेन डिड यू रियली फील कि बस यार, और फिर उसके बाद नए सिरे से खुद को समेटा और शुरू की नई जिंदगी।

अच्छा आप अपनी पसंद का कोई गाना बता सकते हैं? नोज रियोन, आई डोंट वांट टू गो फॉर पोइट्री, बिल्कुल भी नहीं, मूड नहीं है। अच्छा सरयोन, अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है, अच्छा सरयोन आज तो मैं ना पोइट्री वाला मैसेज पढ़ रही हूँ, नेक्स्ट वीक अगर तुमने पोइट्री का कोई भी मैसेज किया ना तो मैंने वो शामिल ही नहीं करना, ठीक है? फिर मैं शामिल नहीं करूँगी तो तुम समझ जाना कि मैं ना पोइट्री ही नहीं शामिल करना चाह रही हूँ शो में, ठीक है? चलो ऐसे कोड वर्ड रख लेते हैं। Here we go with this song and गाना अच्छा है।

Hi Delicious, welcome back. Okay, जी एहतिशाम कह रहा है कि शिबा मलिक मैंने 3 महीने पहले गिव अप किया था जब सच में लगा कि लाइफ इज रियली गॉन, बट फिर उसके बाद लगा कि अभी और जीना है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैं आस हूँ, जिनकी मैं उम्मीद हूँ कि ये जो दौर चल रहा है ना, ये अर्ज करने वाला दौर नहीं, हुक्म करने वाला दौर है. सही कहा तारिक. मैम, मेरे पैदा होने से पहले के म्यूजिक चल रहा था. जब तुम्हारे पैदा होने वाला चल रहा था तब तुम कौन सा शो में थे? सो इसलिए ज्यादा शाने नहीं बनना अब, ठीक है? 18 अगस्त को बहुत खास दिन है. वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च डे है, इंटरनेशनल डिलीवरी ड्राइवर्स एप्रिसिएशन डे है और नेवर गिव अप डे है. अब हमने बात करनी है जो डिलीवरी ड्राइवर्स होते हैं उनके बारे में बात करनी है. और हम सब ने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी मीम्स, बहुत कुछ देखा होगा. कुछ लोग इनको पसंद करते हैं, कुछ लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, और कुछ लोग इनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं. इस तरह के मैंने बहुत सारी जो है एक्सपीरियंस देखे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी हैं. लिटरली दिल हो रहा होता है फ़ोन के अंदर घुस

0: बंदा जो है ना इनकी खूब मरम्मत कर दे। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे आसपास होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि जो डिलीवरी ड्राइवर्स होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। कुछ लोग जो अपने अंदर खुदाई दावे करके बैठे होते हैं, अपने अंदर एक खुदा रखते हैं, वो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं कि हाँ जी हम ज़मीनी खुदा हैं, क्योंकि ज़मीनी खुदा ही इस तरह की घटिया हरकत कर सकता है, क्योंकि वो जो रब्बुल इज़्ज़त है वो तो सोच भी नहीं सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाए। सो आई थिंक वी शुड ऑलवेज ब्रिंग फ्रेंडली मैनर्स टूवर्ड्स दैम, इन लोगों के लिए इतने फ्रेंडली मैनर्स हो जाए, यू नेवर नो। कुछ लोग तो अपनी एज से बड़े होते हैं और वो ये जब काम कर रहे होते हैं तो मुझे तो लिटरली शर्म आ रही होती है, और फिर मैं पीछे सोच रही होती हूँ उनका बैकग्राउंड की पता नहीं क्या ही मजबूरी उनकी रही होगी। प्लीज़ रिस्पेक्ट देना सीखिए और इज़्ज़त देना सीखें ऐसे सारे लोगों को, डोमेस्टिक स्टाफ में जो लोग आते हैं और जिनको शायद वैसी वाली जॉब नहीं है, जिनकी वाइट कॉलर जॉब नहीं है, ब्लू कॉलर जॉब है, ऐसे सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट किया करें, क्योंकि आपको उनकी मजबूरी नहीं पता है, क्योंकि हमें हमारी मजबूरियाँ लग रही होती हैं बहुत बड़ी हैं, जब हम किसी दूसरे के अंदर झांकते पता चलता है यार हमारा तो कुछ भी नहीं था। एनीवेज, सो आई गॉट लाइक लाइव कॉल्स, बार बार बजता ही जा रहा है हमारा फोन, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, तो हम लेते हैं लाइव कॉल्स फिर। लेट्स सी कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आसिया खान लाहौर से।
0: वालेकुम अस्सलाम आसिया।
1: आसिया आयन से,
0: आयन से आसिया।
1: कैसी है आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं?
1: शुक्र अल्लाह का, मेरी तरफ से सब सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: आपका टॉपिक जो है उससे मैं कहना चाहूँगी कि मैंने भी हार मानी है, लेकिन एक बहुत मुश्किल वक्त था मुझसे, कोई मुश्किल ऐसा वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक शख्स को कहा था जिससे मुझे इतना यकीन था कि माँ बाप से भी ज्यादा उससे यकीन था। मैंने उसे कहा कि आखिरी वक्त एक दफा सिर्फ मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक दफा। वो उसने बहाने बनाए, ये हो गया वो हो गया, फिर मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मेरी चोट लगी है, लाइफ वो कॉल करो, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, ये हो गया वो हो गया, फिर बस मैंने कहा ये नहीं हो सकता। मेरे इतना मुश्किल वक्त मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि आज मेरी मदद करो, बस ये कहा कि आखिरी वक्त मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, फिर कभी अगर हम जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन बस एक दफा अपनी झलक दिखाओ। वो भी उसने हजार बहाने, आ रहा हूँ नहीं आ रहा, ये हो गया एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया कॉल करो मैं दिखाता हूँ, ये हो गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बस मैंने कहा नहीं, अब बस अब किसी पे यकीन नहीं करना, बस एक अल्लाह पे करना, किसी पे भी नहीं करना, इंसान यकीन के काबिल ही नहीं है।
0: ऐसे है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में ये यकीन के काबिल नहीं है, और इसी तरह के लोगों ने हमारा एक्चुअली भरोसा जो है ना तबाह बर्बाद किया हुआ है। तो होता ही है कि जब तबाह बर्बाद हो जाता है फिर शायद हम जो सही लोग होते हैं उन पे भी भरोसा नहीं कर पाते।
1: तो बात है, हजारों लोग आए लेकिन हमने कहा नहीं भाई, बस यकीन नहीं करते हम किसी
0: पे। सही बात है, सही है,
1: ताले लगा
0: दिए हमने। अच्छा, लेकिन इतना भी ताले मत लगा के बैठ जाना कि मतलब एक टाइम आए कि तुम्हें खुद लगे कि किसी की जरूरत है और फिर उसके बाद जो है रास्ते बंद हो जाएं। इतने दरवाजे खुले रखना, ठीक है, कि मतलब लेट राइट वन कम इन योर लाइफ ना।
1: अच्छा, लेकिन क्या करे, अब यकीन ये दिल नहीं कर रहा कि अब कोई किसी पे यकीन करे।
0: आ जाएगा वक्त, वक्त के साथ, वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं, फिर उसके बाद इंसान जो उसका परसेप्शन भी चेंज हो जाता है, वक्त लगता है।
1: वक्त लगता है, बहुत वक्त।
0: यस, वक्त लगता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आपने
1: मेरी,
0: हाँ जी, बात सुनाए अपनी।
1: आपने कहा है आज मैं रिक्वेस्ट प्ले करूँ।
0: हाँ ना, कर रही हूँ ना, बोलो।
1: अच्छा, मेरी तकदीरों में लिखिया मौला तू ही मोड़ दे, ये वाला सॉन्ग।
0: ये किसका
1: है? I don't know, ये ना ड्रामा है उसका है।
0: OST है?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, ओके, मेरी तकदीर OST, ठीक है, निकालती हूँ मैं, मिलता है तो प्ले करती हूँ। ठीक है,
1: ठीक है, शुक्रिया, और तमाम और 101 जिंदाबाद।
0: अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। तकदीर OST, ठीक है जी, वो प्ले करने की ट्राई करते हैं, और फिर उसके बाद साथ साथ लाइव कॉल्स ले रहे हैं। जिंदगी में कब गिव अप किया, कब हार मानी, कब लगा कि बस यार थक गए। हेलो,
2: जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शिवा आपकी?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन और कहाँ से?
2: जी लाहौर से हम बात कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा की तरह प्रोग्राम बहुत, और हमेशा कॉल मिलाई, आज पहला दफा कॉल है।
0: अच्छा ओके, इरम कैसी हो?
2: अल्लाह का करम, शुक्र है माला का, और दुआएं आप सुनाएं।
0: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह का।
2: और अफिया, अगर टॉपिक पे बात करें तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि जिंदगी से अब हम बस कर दें। शुक्र अल्लाह का, हाँ बहुत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप ही मुझे एक बात, काफी दिनों से यही कहते कि मेरी अगर कॉल लग जाती तो मैंने आपकी से यही कहना था कि भले आपने सराकी में बात नहीं की, लेकिन आपने एक सराकी में गाना गाया था, बहुत ही अच्छी लगी थी आपको सराकी।
0: कौन सा वाला गाना गाया था मैंने?
2: आप ही अगर आप वो प्ले कर दे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।
0: गाना कौन सा था?
2: हाँ वो गाना है कि रख फुलाते
0: पैर सजते हैं। रख फुलाते, यार वो तो मेरा फेवरेट है, मैं लगाऊंगी।
2: जी जी, आपकी आपकी अल्लाह आपको खुश रखे, इसी तरह आस्था मुस्कुराता रखे।
0: थैंक यू,
2: आप ही अगर आप कर देंगी। थैंक यू,
0: ओके डियर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन और कहाँ से?
1: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: जी बिस्मा, कैसी
1: आपको
0: हैं
1: आवाज
0: आप?
1: ठीक आ रही है?
0: हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है।
1: मैं ठीक हूँ और मुझे भूल ही जाता है कि आपका आज शो है। तो अभी मैं ना स्टडी करने लगी थी तो अचानक मैंने ट्यून किया तो आपकी आवाज आई, तो मैंने वो बुक साइड पे रखी तो बैठ गई हैंड फ्री वाला। ये
0: शाबाश,
1: बात
0: अगली बार ये बोला तो
1: इतने
0: सजा ही
1: लोग
0: मिलेगी। अगली बार ये बोला तो कॉल मैंने काट देनी, मुंह पे मैं पहले बता रही
1: क्यों?
0: हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी
1: अच्छा
0: पसंद
1: या
0: नहीं है कि कोई बोले कि
1: हम
0: मैं भूल गई थी।
1: तो आपका संडे वाला शो सुनते थे ना हम, तो ये
0: अरे
1: अब
0: यार,
1: आने
0: संडे
1: की उम्मीद
0: आएगा
1: थी इंशाल्लाह,
0: इंशाल्लाह, संडे भी वापस आएगा, जरूर आएगा।
1: मुझे आप ये बताएं कि जब मैंने ट्यून किया तो एक लड़की धोखा वगैरह पे बात हो रही थी, बेचारी
0: धोखा
1: क्लास
0: वगैरह पे नहीं
1: सिक्स
0: बात हो रही थी, टॉपिक हमारा ये
1: लड़की।
0: जिंदगी में आपने कब गिव अप किया था? जब आपकी लाइफ में सारा कुछ शैटर्ड लग रहा था तो कब आपने हिम्मत हार दी थी? टॉपिक ये था एक्चुअली, तो वो अपना बता रही थी अपनी लाइफ के बारे में।
1: अच्छा, मैंने तो अभी मैं स्टडी करने लगी तो जब मैंने ट्यून किया आपकी आवाज सुनी तो मैंने हिम्मत हार दी कि मैं नहीं पढ़ सकती।
0: ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था।
1: हाँ, ये आजकल की जो जेंजी है ना, बस वो इस टाइप की है। वो कहते हैं नहीं, बस हम
0: हाँ,
1: नहीं कर
0: वो उसी
1: सकते,
0: लम्हे
1: एक बार
0: उनके
1: दो
0: टेस्ट में नंबर भी कम आ गए तो उन्होंने हिम्मत हार दी।
1: हम हिम्मत हार जाते, हम कहते हैं
0: उनकी
1: नहीं
0: पसंद
1: बस
0: का उनको
1: दो।
0: बर्गर नहीं मिला तो भी हिम्मत हार दिया उन्होंने।
1: हमारे पसंद का गाना भी नहीं ना लगा और रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई, तब भी हम हिम्मत हार जाते, हम दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे।
0: ओके ठीक है, अगर ये बात है तो मैं जरूर तुम्हारी पसंद का गाना नहीं प्ले करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम हिम्मत हार जाओ।
1: मैंने कभी रिक्वेस्ट की ही नहीं गाने की आपसे।
0: और आई डोंट
1: मुझे
0: बिलीव
1: पता
0: इट,
1: है
0: आई डोंट बिलीव कि जेंजिस के अंदर इतना पेशेंस है कि वो पूरा गाना सुने। ओह वेल बिस्मा, अच्छा लग रहा था तुमसे बात करके। और मैं बिलीव करती हूँ कि जेंजिस के अंदर कोई पेशेंस नहीं है कि वो पूरा पूरा गाना सुने, ठीक है? वो थोड़ा सा वो ही ना आदत हो चुकी है रील्स एंड ऑल दैट की, तो वो जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये सच में इट्स काइंड ऑफ थॉट प्रोवोकिंग कि हम लोग जो हैं मतलब शॉर्ट टेम्पर हैं, बर्दाश्त नहीं है, सुनना नहीं, देखना नहीं, स्टे नहीं करना, कंसिस्टेंट नहीं रहना, तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा होती जा रही हैं। एनीवेज, फिरोज असलम हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सऊदी। शो इज़ गोइंग ऑसम, प्ले सॉन्ग सिंगर नदीम अब्बास, बिस्मिल्लाह करा। ओए होए, पुराने गाने की रिक्वेस्ट आ गई है। ओके, आई एम गोना प्ले दैट। और लेकिन गाने पूरे पूरे नहीं प्ले होंगे, ठीक है? और थैंक यू सो वेरी मच फॉर बींग इन माई शो ऑल द वे फ्रॉम सऊदी। अच्छा, कॉलर कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, मेरा रेस्पेक्टेड शोभा मलिक, आपकी क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हामिद उल मला खैर, मेरे भाई कैसे?
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, आपका क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम फजल अल्लाह का।
2: वो भी एक दौर था जब आप चिन चिन शो कर देते।
0: हाय, वो भी दौर थे।
2: फिर भी वो दौर था जब आप वीक में एक शो करता था,
0: ऐसे ही है,
2: महीने में दो शो करते हैं।
0: बस देखा ना, इसी तरह हालात बदलते रहते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। शुक्र करें अभी एक कर रहे हैं।
2: हाँ बिल्कुल, पीकिंग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। अभी तक आप शो मुझे याद है, संडे के दिन, हफ्ते के दिन, मंगल के दिन जब आप शो करते थे।
0: अभी भी देखा सारे लोगों को संडे का, मुझे, मैं खुद भी संडे का शो बहुत मिस करती हूँ। वीकेंड पे एक अपनी अलग ही बात होती है, तो मैं भी मिस कर रही हूँ। इंशाल्लाह हो जाएगा वक्त के साथ साथ, उम्मीद तो है।
2: काश आप लोगों को दोबारा वही शोज मिल जाए, धड़ाधड़ शोज। आप
0: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।
2: अभी यार शायद जो है वो एक चीज काम तो होता है, आपको तो भी पता है, कैद आजम जब होगा फिर सब कुछ काम होएगा। भी बात यही मत,
0: सही बात ऐसे ही है।
2: और बहुत ज्यादा प्यार आपके लिए शिवा भी। और आज आपके स्टेटस पे माशाल्लाह बहुत ज्यादा कमेंट होता है।
0: बस ये तो अब मैं क्या बोलूं, आप सबका थैंक यू, आप सब लोगों का प्यार है, आप सब लोगों की मोहब्बत है।
2: सिंगर बहुत अच्छा लगता है, अभी तक वे अभी जब एफएम के 2 बजे के ज्यादा ज्यादा हर किसी के शो में 25-35 आप तकरीबन 350-400-500 तक हो जाता है।
0: माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। थैंक यू सो वेरी मच हामिद उल मला खैर, मेरे भाई सलामत रहे, खुश रहे, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, तो ये बात है, करम है अल्लाह का। और बस आप लोगों की पसंद है, मोहब्बत है, ऐसे ही होता है। और अल्लाह करे ये इज्जत इसी तरह ही बनी रखे। अच्छा जी, खबर मैं कॉल करूं नहीं लग रही। ओहो, अब हम क्या करें, तुम्हारी तस्वीर आ रही है, मैं तुम्हारी कॉल ही नहीं उठा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कॉल्स तो आप लोगों को पता है, फिर सारे लोग ही कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं।

0: हाई जी, ओके, नाइम टेलर है हमारे साथ, शो इज गुड, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सॉन्ग प्ले कर दिया है फ्रॉम सऊदी अरेबिया मदीना मुनव्वरा, बहुत यू आर वेलकम, अल्लाह आपको भी सलामत रखे जी। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, मैं आपका शो पहली मरतबा देख रहा हूँ, मुझको आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पहली दफा मेरा शो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है।
1: देख रहे हैं, सुन नहीं रहे, देख रहे हैं।
0: आई वाह, जी जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: मोहम्मद सिद्दीक बात कर रहा हूँ, लाहौर से।
0: जी जी, पहली दफा आप मेरा शो सुन रहे हैं?
1: पहली मरतबा डब्बा पैक मोबाइल लेके आया हूँ, पहली मरतबा सिम डाली है, पहली मरतबा आपके क्यों की है, पहली मरतबा आपकी बातें सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, सब कुछ आज आपने पहली दफा ही कर दिया है।
1: क्या
0: पहली दफा ही आज आपने सारा कुछ कर दिया है?
1: पहली मरतबा ही कर दिया, क्योंकि आपकी आवाज इधर हमारा बांधा था, वो मोबाइल पे आपका शो सुन रहा था, मैंने कहा इधर लाओ, मुझसे भी इधर मम्मी सुनना है इसको।
0: अच्छा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच।
1: चलो थैंक यू,
0: अपना अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।
1: अपनी मर्जी का कोई गाना ला दो।
0: ठीक है, ओके, ये गाना मेरी मर्जी का, आपके लिए ही है।
1: अपनी मर्जी का,
0: ठीक है, ठीक है, मेरी मर्जी का ही लगा हुआ है।
1: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।

अच्छा जी, शो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हम लाहौर में ही रहते हैं। सलाम पाकिस्तान, नाल नाल दुहाड़े ते नाल नाल साढ़े एफएम वन लाहौर। आई वाह, प्रोमो हमारा। जिंदगी में कब था जब आपने हार मान ली और आपको लगा बस यार मेरी बस हो गई, और फिर उसके बाद जिंदगी नगर नहीं, अभी बस नहीं हुई, अभी तो बहुत सफर बाकी है। तो आप लोग कॉल कर रहे हैं 04211100101। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम आप जी, क्या है? ठीक हो
0: जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहां से?
1: मैं आप जी रावी दे कंडे से बोधी जट गल कर रहा आप जी।
0: जी जी, की हाल चाल?
1: ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। आप जी थोड़ा शो सुनया तो माशाल्लाह और ठीक ठाक हो गया।
0: अच्छा पहले बीमार सी, डॉक्टर ने कहा सी नुस्खे दे विच शिबा मलिक दा शो सुनो।
1: जी जी आप ही शिबा मलिक दा शो सुनया, वावा दिन हो गया सन ते बाकी असि बीमार सा।
0: ओके ठीक है।
1: हाँ जी आप जी दे अल्लाह दे हुक्म नाल तुसी बहुत सोहना शो कर रहे हैं। अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी उम्र दे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत
1: आप जी। एक साडा सॉन्ग भी लाना जे तुहाडी शायर होवे ते तुहाडी पूरी टीम दे दो हत्थां नाल सलूट है आप जी साडा।
0: अच्छा जी तुहाडा केड़ा सॉन्ग है?
1: हाँ जी
0: तुहाडा केड़ा गाना है?
1: आप जी आपदा प्रवीण साहब दा सॉन्ग है अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने।
0: अरे लोगो ये शो नहीं है जिसमें ये गाने की रिक्वेस्ट करनी है।
1: रख फुला पैर सदके मैं थी ना शहर होगी जवाबे वास्ते रहे ला देना साडिया पसंदा तू सोने उत्ते सोना अल्लाह थले तू सजना।
0: हाँ हाँ हाँ क्या बात है। चलो ठीक है ओके जी इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।
1: जबरदस्त सवाल सुनने वाले को सलाम से मेरी आपी इरम साहब आए सर भी सलाम से मेरी नीला आपी ने ते पाकिस्तान जिंदाबाद आपी जी।
0: ओके जी अल्लाह हाफिज़
1: अल्लाह हाफिज़।
0: हाँ जी पाकिस्तान जिंदाबाद। और जब शो का वक्त थोड़ा कम हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी बात किया करें। प्लस एक चीज़ बहुत ख़ास है, वो सारे लोग ध्यान रखा करें कि कौन सा प्रोग्राम है और उसमें कौन सा म्यूज़िक है जिसकी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा देख लिया करें। कलाम है वो रात को 2 बजे के बाद रिक्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये जो भी उनकी कहीं ना कहीं तो लड़ाई जरूर हो रही है, उनको पता है, उन्होंने कॉल मिला दी है। मुझे लगता है इसी बात पे लड़ाई हो रही है कि हमारी कॉल ही नहीं लग रही है। ठीक है, जिंदगी में कब वो वक्त आया जब आपको लगा कि बस यार बस हो गई है, अब आगे कुछ भी नहीं। जरियो ने मैसेज किया है, शिबा मैं अभी इसी वक्त ही हार मान रहा हूँ क्योंकि आपने पोइट्री नहीं पढ़ी, तो मेरी जिंदगी का आज ही वो दिन है जब मैंने गिव अप किया है। ओके, और मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर मैं तुम्हें कोई भी बकअप नहीं करूँगी, इसके ऊपर मैं तुम्हारी कोई हौसला अफजाई नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं बढ़ाऊंगी, मैं कहूँगी ठीक है इट्स ओके नेक्स्ट वीक सही। क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमारे अपने इख्तियार में है। अल्लाह करे कि नेक्स्ट वीक हम शो करें और सब कुछ स्मूथ रहा तो पोइट्री वाला काम ज़रूर करेंगे हम, ठीक है? वरना ना ही समझो। शिबा मलिक चाय के साथ क्या चाहिए आपको? चाय के साथ जलेबी। ये वो वियर्ड कॉम्बिनेशन है जिसका मुझे कभी भी बिलीव नहीं हुआ। मैं कहती यार ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, बट आज मेरा दिल कर चाय के साथ फीकी वाली जो है ना चाय, उसके साथ जलेबी, मीठी वाली सही वाली कड़क वाली जलेबी, लाल लाल सी कुछ ऐसा वाला। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ सलमाबाद लाहौर से।
0: जी जी क्या हाल चाल है आपका?
2: अल्लाह का शुक्र प्रोग्राम अच्छा है आपका, सुन रहा हूँ शुरू से।
0: थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया।
2: तो आपके हफ्ते में कितने दिन आती हैं?
0: एक ही दिन।
2: ये पूरा हफ्ता नहीं हो सकता, 7 दिन के 7 दिन पूरे?
0: नहीं ऐसे नहीं हो सकता, दुआ करें हैं, रिक्वेस्ट भेजें, इनको लेटर भेजें, इनको मैनेजमेंट को बोले शिबा मलिक को हफ्ते के 7 शोज दे दें।
2: ये मनोरंजन था हर दिन होना चाहिए।
0: बिल्कुल ऐसे ही है,
2: जिसकी आखिरी कॉल मिलती है वो बड़ा किस्मत वाला होता है। अल्लाह का शुक्र
0: ऐसे ही है, तो आप बड़े किस्मत वाले हैं।
2: मगर अब जान हुई है साथ ही मेरी कॉल मिल गई है।
0: ऐसे ही है, चलिए जी ठीक है ओके। लास्ट मिनट्स हैं और देखते हैं कि कौन है। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी मैम जी क्या है, एंड पे सॉन्ग लगा देना, न्यू है कदी सप्पा चो लब दी वफा नहीं। ओए होए होए इतना हैवी गाना खबर। ठीक है प्ले करूंगी, तुम्हारी लास्ट वीक भी रह गई थी कदी सब पांचो। मुझे याद है कि वो जाने वाला सांप भी मुझे लगता है तुमने ही रिक्वेस्ट की थी। कौन से गाने रिक्वेस्ट कर देते हो तुम, कदी सब पांचो लब दी नहीं वफा। ओए होए छो। अच्छा जी मुझे याद है कि वो जाने वाला सांप भी मुझे लगता है तुमने ही रिक्वेस्ट की थी। कौन से गाने रिक्वेस्ट कर देते हो तुम, ਕਦੀ ਸੱਪਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਓਏ ਹੋਏ ਛੋ। अच्छा जी, अब जो है हमारा जाने का वक्त होने वाला है। आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो देख लेते हैं। लास्ट सॉन्ग वही है, गदी सप्पा चो नहीं लब दी यारी, कोई हैवी गाना ही है। अच्छा मैसेज है जी, कॉल पर थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दिया करें प्लीज़, हमारी बारी आते

आते शो का टाइम ऑफ हो जाता है. हार मान ली, कॉल नहीं मिल रही, बट थैंक यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए. मोस्ट वेलकम फिरोज. मेरे शो में ही शायद ऐसा होता है कि मैं इतनी शॉर्ट बात करती हूँ कि लोग इस बात पे कंप्लेन करते हैं कि मैं पूरी बात ही नहीं करती हूँ. तो मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि सबकी बारी आनी चाहिए. मैं एवरी वीक कॉल्स नहीं लेती हूँ, कभी कभी कॉल्स लेती हूँ, अच्छा लगता है कभी कभी बात करना. अच्छा जी, अभी हार नहीं मानी जिंदगी ने. मैम जी, अभी मेहनत जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी लाइफ जारी है. मेहनत करके श्रीकांत का मुंह बंद करने ओके. यो ब्रो, ये तो वो वाला था. गुड. एनीवेज, जिंदगी में कभी भी हार मानने से पहले ऐसे सारे लोगों को देखा करें जिनकी जिंदगी में ना कोई सहारा है और अल्लाह के सिवा उनका कोई भी नहीं है. ऐसे लोगों को जरूर देखा करें, ढूंढ ढूंढ के देखा करें. वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा लेसन होते हैं. आई पर्सनली नो मेनी पीपल जिनको वो होते हैं ना, ऐसे लोग वो पैदा होते हैं जिनके माँ बाप की डेथ हो जाती है और वो अकेले ही शायद होते हैं, और फिर उसके बाद उनकी फैमिलीज, उनके रिश्तेदार, पता नहीं कौन कौन उनके साथ दुनिया जहान की वो बदसलूकियाँ करते हैं, उनको ऐसे ऐसे सबक सिखा देते हैं ना कि या तो वो सच में सबक बन जाते हैं किसी दूसरे के लिए, और या फिर वो ऐसी मिसाल बन जाते हैं ना कि लोग उनका नाम लेते हुए भी डरते हैं. तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है कि जब हम चोटें खा लेते हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेते हैं ना, तो या तो हम सबक सीख जाते हैं या हम किसी के लिए मिसाल बन जाते हैं, और वो भी बुरी वाली. तो अल्लाह करे आपके हौसले सलामत रहें और आपकी ज़िंदगी में जो भी किसी किस्म की स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से शायद आप अपने ख्वाबों को पूरा करने की उम्मीद रखते हैं, जिसकी वजह से शायद आपका हौसला अभी बाकी है. और ये बात सच है कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम खुद इसलिए नहीं टूटते क्योंकि हम बहुत सारे लोगों का सहारा होते हैं, हम बहुत सारे लोगों की उम्मीद होते हैं, तो इसलिए भी नहीं टूटते. सो नाउ दिस वॉज इट, आज के लिए इतना ही. सो अब आप लोगों के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूजडे. टिल देन डू टेक केयर ऑफ yourself and your loved ones. Allah Hafiz and hearts of lads.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि नौजवानों को रोज़गार के मौके फ्राहम करने के लिए मौसर इकदाम यकीनी बनाए जाएं। नायब वज़ीर आज़म ने फ्रांस के साथ दो तरफा तआवुन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया है। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि हुकूमत दहशतगर्दी, गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे के इंसदाद के लिए जामे इकदाम कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के मुसलसल ज़ुल्म व जबर से कश्मीरियों की बका को खतरा लाहिक है। खबरें तफसील के साथ।
1: हाय, दिस इज एफएम 101.1। मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो कभी मैं

मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: वो एक्चुअली
1: जी
0: जी वो एक्चुअली अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना कि सुरमई रंग बहुत पसंद है आपको।
2: आपकी एक अमानत थी, वो लौटाने आया
3: हूँ। शदीद मोहब्बत करता हूँ आपसे।
1: तो तुम खुशी खुशी रहो यहाँ पे, नहीं रह रहे
4: हम भाग नहीं सकते।
5: उफ, क्या मेरी जान, शादी इज अ कॉम्प्रोमाइज।
6: छुट्टी नहीं मिली मुझे।
7: मैं तैयार हुई हूँ आपके लिए, साड़ी पहन।
8: पहन नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, I can't do this anymore, मुझसे ये शादी नहीं चल रही।
9: वापस घर बुला ले प्लीज।
10: बार बार एक ही,
11: you know what?
12: लेकिन आपको

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: this music, and then this magic. One Above, FM 101.
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या,

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: बाज ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं, बाज ऐसा माहौल होता है या बाज ऐसे लोग होते हैं बड़े टॉक्सिक से होते हैं जो हर वक्त लोगों की बातें करना, इन उधर आप ऐसी गुफ्तगू करें कि उनको मौका ही ना मिले कि उन लोगों को डिस्कस करें इधर उधर की बातें। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है,
1: इधर उधर की कोई भी बात कुछ भी जहाँ आपको लगे कि आपकी डायरेक्शन में नहीं जाते। आप स्किलफुल कम्युनिकेटर्स को देखते हैं ना वहाँ पे, उन्हें आप लर्न करें, ऑब्जर्व करें, उन्होंने गुफ्तगू को अपनी डायरेक्शन में लेके अगर जाना है तो उसके लिए पहले वो सवाल दे,

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रात के 11 बजे है। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए, अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में पहले गूगल ऑफिस का इफ्तिताह किया। नायब वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को गंदम की दरामद का अमल शफाफ अंदाज में यकीन बनाने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि हुकूमत दहशतगर्दी, गलत मालूमात और प्रोपेगंडे की रोकथाम के लिए जामे इकदाम कर रही है। मुल्तान में आज रात पाकिस्तान गोल्ड ने पाकिस्तान ग्रीन्स को फाइनल मैच में 101 रन से शिकस्त देकर नेशनल चैंपियंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है।
1: Hi, this is FM 101.
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती है और खतरा बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेर तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
4: This is FM 101.
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

यूं तो उनसे और मिलना होता हमारा, और क्या, और क्या होता क्या हुआ, ये बातें बहुत अच्छी लगी।

मैं समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी। वो हवा थी या मेरी मोहब्बत का कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

इतना सब कुछ दिल में रह गया कि अब दिल की सुनूं तो सिर्फ मेरी आवाजें गूंजती हैं। वो जा रही थी और हाले दिल आंखों से बह रहा था। हाले दिल का एक लम्हा मेरी आंखों से होता हुआ मेरे जूते पर जा गिरा। वो जूता आज भी मैं पहनने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

नज़म से गज़ल बन गई, तू रोज़ ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रहीं, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे ख़त्म कर अभी, वो गलतियाँ गिनती गई।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101. 101.

सौ सलीमें थी हर एक हरफे जुनू से पहले, क्या कहूँ अब मैं कहूँ या न कहूँ से पहले। वेल जनाब, मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम और आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। प्रोग्राम है हरफे जुनू, आपका और हमारा साथ रहता है 12 से 2 हर मंगल 12 से 2 उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिनके मैसेजेस मुझ तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। फ़ोन की घंटी जो है वो भी जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है मेरे पास यहाँ पे पैनल पे ब्लिंक करने लग गई है। आप सब की मोहब्बतों का शुक्रिया, आप यहाँ पे आते हैं, मोहब्बत करते हैं, बात करना चाहते हैं। क्या बात है आपकी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, सियालकोट, मुल्तान, क्वेटा, पिशावर और इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, उन तमाम जगहों पे, उन तमाम जगहों के रहने वालों को मेरा बड़ा मोहब्बत भरा सलाम। बहुत सारी बातें हैं जो आज मेरे जहन में, मेरे दिल में चल रही हैं और मैं सोच रहा हूँ कि किस बात को आज आपके साथ शेयर किया जाए और किस बात को कितना शेयर किया जाए। कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि हम सोचते हैं कि इन बातों को रहने ही दिया जाए तो बेहतर है। कभी कभी होता है ना यूं। क्या आप कुछ बातें कहना चाहते हो, आपका बड़ा दिल होता है लेकिन फिर आप सोचते हो कि यार आज ये बातें रहने देते हैं, क्योंकि अगर आज मैंने ये बातें शुरू कर दी, अगर आज मैंने ये बात कर दी तो कहीं मामला ख़राब ना हो जाए। कितने लोग होते हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करते हुए कतराते हैं, सोचते हैं कि करें कि ना करें। सौ सलीमें थी हर एक हरफे जुनू से पहले, क्या कहूँ अब मैं कहूँ या न कहूँ से पहले। लेकिन फिर भी करेंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बात करने ही तो आते हैं और मेरा मानना है कि बात करेंगे तो बात बनेगी।

कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि दो लोग होते हैं, नाराजी चल रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मोहब्बत भी बढ़ी रही होती है। एक वक्त एक अरसा बड़ी शदीद मोहब्बतों के साथ गुजारा होता है, बड़ी अपनाइयतों के साथ गुजारा होता है। कभी कभी कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं कि उनको आपने बड़ा अरसा पाला होता है और फिर एक वक्त आता है कि कहीं ना कहीं नाराजी आ जाती है, और ये जो नाराजी है ये आपके इर्द गिर्द आपके आस पास इस तरह से अपनी जड़ें फैलाती है कि आप चाहते हुए भी अक्सर उस शख्स से बात नहीं कर पाते जिससे आप बात करना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजी है। नाराजी होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मोहब्बतें होती हैं, लेकिन ऊपर वो जो नाराजी की गर्द होती है, वो नाराजी, वो मसलहत, ये बड़ा खौफनाक अमल होता है। कभी कभी यूं भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा होता है, और फिर एक नाराजी ने जगह घेरी, एक लंबा अरसा कता ताल्लुकी रही, और फिर कुछ एक ऐसा एक सिलसिला होता है कि किसी मोड़ पे, किसी मुकाम पे, या कभी कभी किसी इवेंट पे आप इकट्ठे हो जाते हो। अब आप आमने सामने हो, आप खुल के नाराजगी का इजहार भी नहीं कर पा रहे, आप गिला भी नहीं कर पा रहे, शिकवा भी नहीं कर पा रहे, और जो मोहब्बत है वो भी कहीं ना कहीं अंदर है। ऐसी सूरत हाल में अंदर ही अंदर घुटना, जब सब खुश होते हैं, हर तरफ खुशियां होती हैं, वो इवेंट बड़ा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वो दो लोग, वो दो अफराद जिनके दरमियान अब एक सर्द सी जंग है, कुछ कहते भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं, लड़ते भी नहीं, दूर दूर से एक दूसरे को देखते हैं, पर सलाम करने की भी उस तरह से हिम्मत नहीं होती।

कभी कभी कुछ लोग आते हैं और वो आपको अपना कुछ इस किस्म का किस्सा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, और आगे आपसे कुछ हल, कुछ सलूशन पूछते हैं कि ज़िया भाई बताएं कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। और आप भी बाज़ औक़ात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जितने गुंजल हैं, जितनी उलझने हैं, किस डोर को कहां से सीधा करने की कोशिश की जाए कि ये गुंजल आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो। कभी कभी गुंजल खोलने के चक्करों में आप अपनी डोरी को कुछ मज़ीद उलझा देते हैं। नीयत बड़ी अच्छी होती है लेकिन बाज़ औक़ात स्ट्रेटेजी काम नहीं आती, होता है ना। कभी कभी दिल कुछ और कहता है और उसूल कुछ और कहते हैं। क्या करें, दिल की माने या उसूलों की माने। दिल कहता है कि छोड़ो इन लड़ाइयों को, झगड़ों को, आओ दोबारा से उस मोहब्बत के बंधन में बंधते हैं। मसलहत कहती है कि नहीं, उसूल कहता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें जायज़ बनती हैं, कुछ गिले कुछ शिकवे जायज़ बनते हैं, कुछ नाराज़ियाँ यहाँ पे बड़ी जायज़ हैं। ये जो कश्मकश होती है ना, बड़ी ख़तरनाक होती है। बहरहाल हो सकता है कि आप में से कुछ दोस्त इस किस्म की सिचुएशन से गुज़रे हों, और कुछ जो मेरी बातें सुन रहे हों उनके बिल्कुल ऊपर से ये बातें गुजर रही हों कि ये क्या बात की जा रही है। बहरहाल बात तो करनी है और बातचीत के सिलसिले तो चलेंगे ही सही। आपका और हमारा साथ यकीनन 2 बजे तक रहने वाला है, लेकिन साथ साथ कुछ गाने भी शामिल करते रहेंगे प्रोग्राम में। ये गाना बड़ा खूबसूरत है, आयमा बेग और शुजा हैदर की आवाज़, कोक स्टूडियो वर्जन, द ट्रैक इज बावरे। ये सुनिएगा, इसके बाद मिलते हैं। साथ साथ रहिएगा FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

वेल जना, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से, खुश आमदीद। और कुछ मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ सलमा रशीद DHA लाहौर से कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम जियान जुम भाई। भैया बातें तो बात को तोलो फिर मुंह से बोलो, गिला शिकवा भी अपनों से होता है, अगर मोहब्बत है तो इग्नोर करना सीख लो। ओके, ठीक है। और नेमल हैं हमारे साथ, कहती हैं कि मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर ना हुई, वो शख्स आके मेरे सिटी से चला गया। अच्छा, मैं समझा शायद आपने कुछ शेर लिखा है। अच्छा जी, इनका कहना है कि 3 साल पहले वाइफ से डिवोर्स हो गया, मैं अब डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार हूँ, प्लीज़ कोई हल बताएं ताकि मैं खुश रह सकूँ। फ़खर फ्रॉम हैदराबाद, मैं आपको हैदराबाद से सुन रहा हूँ, आर्मी हैदराबाद कैंट से। भाई अगर आपका 3 साल पहले डिवोर्स हो चुका है तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें और हो सके तो दूसरी शादी कर लें। ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, प्यारे होते हैं, जो कुछ हमसे छूट जाते हैं, कुछ को हम छोड़ देते हैं। अब चाहे हमने किसी को छोड़ा हो या कोई हमसे छूट गया हो, बहरहाल हमें आगे तो बढ़ना होता है, हमें मूव ऑन करना होता है। ज़िंदगी रुकती नहीं है, वक्त रुकता नहीं है, घड़ी की टिक टिक मुसलसल चलती रहती है और घड़ी की टिक टिक ने चलते ही रहने होता है। अगर हमारी सांसें चल रही हैं, अगर हम खुद यहाँ पे मौजूद हैं, बहाल हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी बाकी है और अभी बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, जो करने वाला बाकी है। वो एक शख्स की बड़ी खूबसूरत बात मैंने पढ़ी थी। वो कहता है कि मैं रोज़ जब उठता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि आज भी अगर मैं ज़िंदा सही सलामत सांस लेता हुआ उठ गया हूँ, यानी आज भी ज़िंदगी बाकी है, तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मकसद, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो अभी पूरी नहीं हुई, कुछ ऐसा अधूरा है जो अभी पूरा होना है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ज़िंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ। जिस दिन मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन मेरी ज़िंदगी के मानी ख़त्म हो जाएंगे, यकीनन मुझे अगली सांस नहीं आएगी। अगर मैं ज़िंदा हूँ, अगर मैं बहाल हूँ, अगर मैं जी रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा काम है जो अभी करने वाला बाकी है और वो काम मुझे ढूंढना है और ढूंढ के करना है। फेसबुक के मैसेजेस को शामिल करते हैं। आपके फेसबुक पे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे मैसेजेस अब तक कर दिए हुए हैं, इनको हम शामिल करते हैं। महाजबीन हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच महाजबीन, आप सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ साथ इस्लाम गुज्जर कहते हैं कि वेलकम सर, मैसेज सबके पढ़ा करें, कुछ लोग दीद से, मोहब्बत से, खुलूस से पैगामात भेजते हैं। यकीनन अगर आप पैगामात भेजेंगे और यहीं पर भेजेंगे तो आपके मैसेजेस को ज़रूर शामिल किया जाएगा। अगर आप कहीं और मैसेज भेजते हैं जिस तक मेरी रसाई ही नहीं है, तो फिर मैं आपके मैसेजेस को कैसे शामिल करूंगा। फैसल अब्बास सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम।
سائم تبسم کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں بھائی جان، یقین کرو بہت اچھا پروگرام کر رہے ہو بھائی جان، آپ بہت اچھا بولتے ہیں، آپ کا پروگرام سن کے بہت پسند کر رہے ہیں، میں اور میرے ساتھ کافی دوست سن رہے ہیں، آپ کو سب سلام دے رہے ہیں، وعلیکم السلام، اللہ راضی ہو آپ سے۔ ہم پیرس فرانس میں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں بھائی جان، اپنے پیارے انداز میں کوئی غزل ہی سنا دو، آپ کا بہت شکریہ۔ تمام سننے والوں کو محبت بھرا سلام، پاکستان زندہ باد۔ سائم بہت شکریہ، آپ پیرس سے ہمیں سن رہے ہیں، آپ تو انٹرنیشنل کھلاڑی نکلے جی، کیا بات ہے۔ ایک غزل کی فرمائش کی ہے آپ نے اور طاہرہ مسعود آئی ہیں، سلام سلام کرتی ہیں اور ایک غزل ہی بھیجتی ہیں، تو آپ کو یہی غزل سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیرے ملنے کو بے کل ہو گئے ہیں مگر یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، بہاریں لے کے آئے تھے جہاں تم، وہ گھر سنسان جنگل ہو گئے ہیں، یہاں تک بڑھ گئے عالم ہستی کہ دل کے حوصلے شل ہو گئے ہیں، کہاں تک تاب لائے ناتواں دل کے صدمے اب مسلسل ہو گئے ہیں، نگاہ یاس کو نیند آ رہی ہے، مزا پر اشک بوجھل ہو گئے ہیں، انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ، یہاں جو حادثے کل ہو گئے ہیں، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جن کو دیکھ کے ہم جیتے تھے ابھی بھی وہ سامنے ہوتے ہیں لیکن اب تعلق نہیں رہا ہوتا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جگنو جونیئر ہیں، سلام کرتے ہیں، وعلیکم السلام۔ 04221100101 پہ آپ کی کالز بھی لی جائیں گی کچھ دیر تک۔ ساجد علی سلام کرتے ہیں، وعلیکم السلام۔ نیر شہزاد سلام کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ساجد علی آپ کا بہت شکریہ۔ نذیر کھوسو کہتے ہیں کہ وقت صرف گھڑیوں کی سوئیاں نہیں بدلتا بلکہ انسان کی سوچ، لہجہ، ترجیحات اور رشتوں کی حقیقت بھی بدل دیتا ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات کہی ہے آپ نے۔ ایک مزید ٹریک کی طرف بڑھوں گا، واپس آ کے آپ سے بات چیت کے سلسلوں کو یہیں سے جوڑتے ہیں، سنتے رہیں، ساتھ ساتھ رہیں 101 پہ، مجھے ضیاء انجم کہتے ہیں۔

0: वेल जरा वेलकम बैक एक दफा फिर से खुश आमदीद। 12:40 हुए चाहते हैं, आपके कुछ कॉल्स का सिलसिला लेते हैं। हमारे साथ आतिफ मौजूद हैं। आतिफ थैंक यू सो मच, हैदर आपका बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ हुसना कवल हैं। हुसना थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। कॉल्स लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से?
1: हाफिजा सिद्रा कुरैशी मंदरा से।
0: जी सिद्रा, क्या कहना चाहेंगी?
1: कैसे हैं भैया आप? ठीक हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं?
1: जी मैं भी ठीक हूँ, बस तबीयत खराब है।
0: क्या हुआ तबीयत को?
1: बस सर में दर्द है हल्का सा।
0: चले अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और सिद्रा की कॉल कट गई। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मामू?
0: ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही है, कहाँ से?
1: जी लाहौर से इरम बात कर रही
0: है। लाहौर से इरम बात कर रही हैं। इरम ठीक हो आप, खैरियत से हो?
1: जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आज लगता टॉपिक नहीं है।
0: आज लगता है टॉपिक नहीं है,
1: है ना?
0: है ना।
1: सच में सच ही बताया मामू, थोड़ी देर अभी ना थोड़ी देर ही हुई मैंने प्रोग्राम सुनते हुए, तो आप बातें कर रहे थे, टॉपिक का नहीं सुना। अगर नहीं है तो बता दें, अगर है तो भी बता दें।
0: टॉपिक अगर मैं आपको बता दूं तो आप टॉपिक पे गुफ्तगू कर लेंगी, बात कर लेंगी?
1: सर अगर समझ में आ गया तो कर लेंगी।
0: पक्की बात है? मुश्किल सा कोई मौजू बताऊँ फिर आपको, उसके ऊपर फिर आपने बात करनी है 5 मिनट?
1: अगर नहीं है तो सॉरी, कोई बात नहीं।
0: नहीं नहीं, कर लेते हैं आपके लिए, आपके लिए कर लेते हैं।
1: ओके सही है, बता दें मम्मी।
0: और सुनाए, क्या कहना था?
1: कुछ बोलने बना ही देते फिर थोड़ा सा। थोड़ा सा कुछ गुनगुना ही देते, सब सुनने वालों का सलाम। अमीला आपकी पोश कर दी।
0: चलो गुनगुनाओ।

0: और कहते रहिए। ये
1: बहुत शुक्रिया इरम, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें।
0: खुश रहें, आप भी आबाद रहें, और अल्लाह पे भी सबको सलाम सुनने वाले।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है आप?
1: जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं?
2: हाँ जी, बहुत बहुत आपकी दुआएं। माशाल्लाह तबीयत ठीक है, आपकी ठीक है ना? माशाल्लाह
1: तबीयत बेहतर है, कुछ बेहतर है।
2: अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती रखे। बहुत बहुत दुआएं जी आपके लिए। तो आज तो मौजू कोई भी नहीं रखा जी आप।
1: मैंने कहा आप आएंगे, आप आके खुद ही कोई ना कोई बात कर लेंगे।
2: तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जी। जो ना कुछ बात ऐसी होती है ना जी, लेकिन जो मोहब्बत होती है ना प्यार, वो तो पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन आजकल जो वक्त है ना, वो आगे जो छोड़ जाते हैं ना, वो वापस मुश्किल ही आते हैं जी। आज ज्यादा ज्यादा हो जाती, इसलिए मोहब्बत क्या यकीन करें। तो माशाल्लाह आपसे मोहब्बत है जी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती बता दें मुझको थोड़ा बहुत। आप भी कुछ सवाल?
1: नहीं, मैंने आज आपसे कोई सवाल नहीं करना, मैं चाहता हूँ आप खुद ही आज बात करें।
2: तो नहीं, वो मुझसे नहीं होगी फिर?
1: नहीं नहीं, ऐसे नहीं ना, वो आपको आपको करनी चाहिए, खुद भी करनी चाहिए कोई बात।
2: नहीं, मुझे पैसे नहीं ना मिलने, फिर मैं क्यों बात करूँ?
1: फिर तो आपको कॉल भी नहीं करनी चाहिए थी।
2: वो तो चाहत है ना, वो मोहब्बत है।
1: तो चाहत है तो फिर बात भी करनी चाहिए, फिर पैसों की बात ही नहीं होनी चाहिए।
2: तो बात तो ये है, इत्तेदा है बाबत का नाम से जो दिलों के हाल।
1: ये तो आप तकरीर शुरू कर रहे हैं,
2: ये आने से पहले करनी चाहिए थी ना।
1: हाँ।
2: आने के बाद कह रहा हूँ,
1: ऐसे थोड़ी होता है। जानबूझ के कभी किसी का दिल तोड़ा है आपने?
2: ये जानबूझ के तो दिल नहीं तोड़ा किसी का, लेकिन लेखे से टूट जाता है किसी का।
1: नहीं, जानबूझ के तोड़ा किसी का? जानबूझ के
2: नहीं, जान
1: सोच समझ के, इरादे से?
2: नहीं नहीं।
1: और इसलिए इसलिए तोड़ा हो कि यार इसमें इसकी बेहतरी है?
2: हाँ, ये बात मानता।
1: क्या जानबूझ के कुछ अगले के साथ ऐसा किया हो कि अगले को बड़ा बुरा लगा हो और उसको तकलीफ हुई हो आपके उस अमल से, लेकिन आपने इसलिए किया हो क्योंकि उसकी बेहतरी है इसमें?
2: हाँ जी बिल्कुल, ये हो जाता जी, ये जिंदगी में हो जाता बिल्कुल।
1: नहीं हो जाता है कि किया है आपने कभी?
2: किया था एक दफा, फिर मैंने खुद ही माजरत मांग ली। यार ये मुझसे गलती हो गई तो माजरत।
1: नहीं, ये क्या बात हुई? अगर आपने अगर आपने किसी के साथ अच्छे के लिए कोई चीज की है, तो फिर आपने माजरत क्यों की?
2: वो उसको जब बुरा लगा तो फिर माजरत करनी पड़ेगी।
1: लेकिन आपने तो अच्छे के लिए किया था ना?
2: बस यही बात हो जाती है ना, आपका बिल्कुल सही जो पॉइंट है ना, बिल्कुल सही मैं समझ रहा हूँ।
1: समझ रहे हैं?
2: तो जो किसी के अगर अच्छा भी करेंगे ना, वो बाले बुरा हो जाता है।
1: चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
2: खुश रखे आपको, बहुत बहुत दुआएं जी आपके लिए। सब आरजे को मेरा सलाम, हमारे प्यारे आरजे भी है वसीम अहमद मौला चाहते, उनको भी सलाम।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या आपने जानबूझ के किसी का दिल तोड़ा है, जानबूझ के कभी किसी का कुछ बुरा किया है? बज़ाहिर वो चीज़ बुरी हो, जानबूझ के दिल तोड़ा हो, लेकिन उसका जो ग्रेटर मकसद है, जो अगर उसको बड़े पैराए में देखा जाए, तो वो आपने किया अच्छे के लिए हो। جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا, والدین ہوتے ہیں بچوں کی اچھی خاصی پٹائی کر دیتے ہیں, مار پڑتی ہے, استاد ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات سزا دیتے ہیں, تو وہ آپ جان بوجھ کے دیتے ہیں. کبھی کبھی آپ کا دل نہیں ہوتا سزا دینے کے لیے, جان بوجھ کے آپ کبھی کبھی مارنا نہیں چاہتے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہو کیونکہ اس میں آپ کے نزدیک اس کی بہتری ہوتی ہے. اس طریقے سے بہت سارے زندگی میں ہمارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے اکثر لوگوں کا دل بھی توڑ دیتے ہیں, ہم جان بوجھ کے کسی کے ساتھ کچھ ایسا برا کر دیتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ یار ہم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا, لیکن ہم کہیں نہ کہیں اپنی طرف سے سچے اس طرح سے اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو اس کی بہتری کے لیے کیا ہے, شاید اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن ہے اس کی بہتری اس میں. تو بتائیے گا اس حوالے سے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کا جان بوجھ کے دل توڑا ہے؟ ایک اور کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم.
3: ہیلو.
1: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے؟
3: انمول ملتان سے.
1: جی انمول, کیا کہنا ہے آپ کا؟
3: میں نے کہنا تھا میں نے یہ
1: السلام علیکم.
4: السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟
4: ساجد ہوں, لاہور سے.
1: دوبارہ نام بتائیے گا.
4: ساجد.
1: ساجد. ساجد کبھی دل توڑا کسی کا جان بوجھ کے؟
4: میں نے آج حسین سماعتوں سے بھی اجازت لوں گا, تھوڑا ٹائم زیادہ لوں گا, آپ کی مہربانی ہوگی میں ایک سال اور تین چار مہینے کے بعد آپ کو میں نے کال کی.
1: چلیں کوئی بات نہیں, آپ نے بے شک دیر سے کال کی لیکن ٹائم نہیں آپ کو زیادہ دینا, ہم نے ٹائم اتنا ہی ملے گا.
4: چلو کوشش کریں.
1: جی بتائیے گا.
4: تو دل میرا یہاں آپ کے پروگرام میں ٹوٹا تھا.
1: نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا, ہمارا میرا سوال یہ کہ آپ نے کسی کا دل توڑا ہے؟
4: کوشش تو نہیں کرتا ہوں کہ میں کسی کا نہ توڑوں, میرا تو سوال آپ نے سنا ہی نہیں.
1: نہیں میں میں آپ کا سوال نہیں لے رہا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں.
4: تھوڑا میرا بھی سن لینا.
1: نہیں آپ نے مجھے میرے موضوع پہ جواب دینا ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کا جان بوجھ کے دل توڑا؟
4: ہو جاتا ہے انسان جو ہے رشتے کے میں
1: ہو جاتا
4: جان بوجھ کے رستہ نہیں.
1: یعنی آپ پروگرام نہیں سن رہے, آپ نے موضوع نہیں سنا ہمارا.
4: نہیں نہیں میں ابھی آن کیا ہے تو آپ کی آواز میں نے سنی, لیکن ٹاپک تو رکھے نہیں آپ نے. شہزاد بھائی آئے آپ سے پوچھا آپ نے بڑا جو مرضی,
1: میں نے اس کے بعد پھر بڑا لمبا ایک ٹاپک بھی بتایا آپ نے سنا ہی نہیں.
4: بس میں وہ کال ملانے میں مصروف تھا.
1: اچھا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے کبھی کبھی یوں بھی.
4: ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اجازت مطلب دینی ہے تو میں اجازت لے لیتا ہوں, لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں میں روزانہ کال نہیں کرتا آپ کو. ایک سال کے بعد ایک آپ نے ٹاپک آپ نے رکھا آج سے ایک سال اور تین چار مہینے پہلے, اس میں آپ نے ایسا ایک موضوع چڑھا اور میں نے ماضی کی باتیں جو بھی تھی نا آپ کو میں نے سچ اگل دیا. ٹھیک تو بات وہ ایسے چلی جو میرے دل میں چھپی تھی نا باتیں میں نے سب کے ساتھ کو بتا دی. میری بدقسمتی یہ کہ ایک کالر اور آیا, اس نے نا آ کر ایسی مطلب جو شہری سنائی نا وہ سعید واسق کی شہری تھی. سچی بات بتانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں, اپنی جان سے جانے والے کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں. اس شہری نے مجھے بہت زیادہ بڑا صدمہ دیا, تو یقین مانے یا انجم صاحب میں نے یہ لاہور بھی چھوڑ دیا تھا. انیلا صاحب ہم اس سے سوال کرتی کہ وسیم بھائی کو کال کرتی تھی کہ ساجد بھائی کہاں گئے, تو میرا دل بھر گیا تھا لاہور سے. اور میں نے 30 سال تک 30 سال ہو گئے ایف ایم آئی کو, میں نے بہت زیادہ اس کو سنا اور کالوں سے بہت بے پناہ محبت کی, سننے والوں سے بہت بے پناہ محبت کی. اسی بات نے مجھے بہت بڑا صدمہ دیا اور میں
1: کسی نے غزل سنائی تو آپ کو صدمہ ہو گیا؟
4: नहीं वो ऐसा हुआ कि मैंने सच आपने सच पूछा तो मैंने सब कुछ सच बता दिया, मैं ना सच बताता तो मुझे क्या जरूरत।
1: नहीं तो अगर कोई आके गजल सुनाएगा या मैं अगर कोई गाना सुना दूंगा या कोई चीज हो जाएगी और वो आपकी बात से रिलेट हो जाएगी तो आप दिल्ली छोड़ देंगे।
4: नहीं वो आप गजल को आप कभी सुने?
1: नहीं वो मैंने सुनी हुई है, मुझे पता है।
4: सुनिए
1: तो आपको क्यों लगता है कि वो सब कुछ आपके लिए ही हो रहा था?
4: नहीं वो पता होता है वो सुनने वाले पर, हम भी तो एफएम सुनते हैं, कई साल गुजर गए, हमें इतना नहीं पता तो फिर पता किसको होगा।
1: चले अगर आपको पता चल भी गया कि ये हो गया तो आप मतलब इतने छोटे दिल के हैं कि आपने उसके बाद एक साल चार महीने से आप ये बात लेके बैठे हुए हैं और आप उसको छोड़ ही नहीं।
4: आपसे मुझे नाराजगी, आपसे मुझे कोई गिला नहीं।
1: नहीं मैं मुझे आपसे ये नाराजगी हो रही है, ये आपसे गिला हो रहा है कि आप इस बात को जो कि रेडियो पे चल रही है, जो कि पर्सनल बात भी नहीं है। पर्सनल बात तो होती है ना कि किसी की बैठक में बैठ के आपने किसी के साथ वन टू वन कोई ऐसी बात कर दी हो, रेडियो पे जनरल एक ट्रांसमिशन चल रही है उसमें कोई बात हुई तो आपने एक डेढ़ साल पुरानी बात लेके आप आज गिला शिकवा कर रहे हैं और उस बात को छोड़ नहीं रहे।
4: आपके प्रोग्राम में मैंने कहनी थी ना, किसी और को तो मैंने नहीं कह सकता ना।
1: नहीं मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये आपको कहना बनता ही नहीं था, ये तो एक जनरल प्रोग्राम होता है, उसमें 100 लोग आते हैं, 100 लोग आके बातें करते हैं, तो इस तरह दिल पे नहीं लेते होते। इस तरह तो अगर आप दिल पे लेंगे तो आप तो आगे जी नहीं सकते। आप तो कहेंगे कि हर बंदा ही आके मुझे कोई ना कोई बात लगा जाता है।
4: नहीं वो वाली बात नहीं है, मैं तो आप मेरे को
1: आप ना साजिद भाई थोड़ा अपना दिल बड़ा करें।
4: नहीं वो
1: ऐसे,
4: तो
1: ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए।
4: वो पता है क्या, जैसा बाप का हकीम तो नहीं कि मेरे जख्मों को मरहम रख देंगे, लेकिन यहाँ पे रेडियो पे आके ऐसी शायरी सुनाए कि जो अगले बंदे को
1: शायरी तो साजिद भाई ऐसी होती है, दुखी होती है। मैं खुद जितनी अगर शायरी सुनाता हूँ वो दुखी शायरी सुनाता हूँ, ऐसी होती है शायरी के जिससे अगले के जो है ना कोई जख्म हरे हो जाए। शायरी का तो मकसद ही ये होता है। अब आप कहें कि ऐसी ये बात ही ना करें, ऐसी चीजें ना करें कि मैं मेरा तो दिल ही हल्का हो जाता है, मैं तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात की है।
4: मैं माफी चाहता हूँ, आपको अजीब लगी है तो मैं आपसे माफी कर लेता हूँ।
1: चलें कोई बात नहीं, साजिद भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। खास तौर पे टीवी पे अगर कोई बात हो रही हो, रेडियो पे कोई बात हो रही हो, यहाँ पे पर्सनल बातें नहीं होती। मैं यहाँ पे अगर आके कोई बात करता हूँ तो मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा होता, और यहाँ पे आके अगर कोई मुझसे बात कर रहा होता है तो भी मैं उसको पर्सनल नहीं ले रहा होता, अपनी ज़ात पे नहीं ले रहा होता, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इस पब्लिक प्लेटफॉर्म में लोग आते हैं, आके अपने दिल की बात करते हैं और वो जनरल बात करते हैं। और अगर आप इस तरह से रेडियो पे की हुई बातों को दिल पे ले लेंगे और साल हा साल उनको याद रखेंगे, उनके गिले शिकवे करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं। यकीन जानिए जो इस तरह की छोटी छोटी बातों को सर पे चढ़ा लेते हैं, अपने आप पर हावी कर लेते हैं, उससे किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ख़ुद को फ़र्क पड़ता है। आपके लिए आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, आप गिलों और शिकवों की स्टेट में रहना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि उसने ऐसा किया या वैसा किया, ये किया या वो किया। जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब लोग वो होते हैं, दुनिया के कामयाब तरीन लोग वो होते हैं जो लेट इट गो करना जानते हैं, जो बातों को, लोगों को, रवैयों को, चीजों को पीछे छोड़ना जानते हैं। वो कहते हैं आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ। आपने लफ्ज बड़ी दफा सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना, पाए ने मिट्टी पाओ यार, अगे बढ़ो। ते जिहड़े लोग अगे वधदे ने पिछलियां चीजां नू, पिछलियां गल्लां नू पिछे छड़ के, वही कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग बातों को चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, यकीन जाने बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे चलना। एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम जयंजन साहब, आपको तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
5: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट सलमानबाद लाहौर से बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है सर? ठीक है
1: भट्ट साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। जल्दी में है किसी?
5: नहीं नहीं मैं तो नहीं, आप कैसे हो ना, कल छोटी करिए किया करें। मैं तो, मेरा तो दिल करता है आपसे चार घंटे बातें करता रहूं।
1: ऐसे थोड़ी हो सकता है?
5: नहीं हो नहीं सकता, बस ये बड़ा मसला है।
1: चार घंटे का तो प्रोग्राम भी नहीं होता। वैसे मैं देखता हूँ कि आप वैसे सुबह से लेकर शाम तक आप कॉल्स कर रहे होते हैं। आपका दिल नहीं धड़ता?
5: रिटायर हो गया हूँ ना अब।
1: अच्छा,
5: तो क्या करूँ? हाँ जी, रिटायर हो गया, मैं अकेला बैठा हूँ बस। आपकी आंटी भी नहीं आती, मैं वादे देता रहता हूँ, क्या करें।
1: ओहो हो, दुविधा होगी
5: कि किसी का दिल तो नहीं दिखाया। तो दिल मैंने दानिश्ता तो कभी नहीं दिखाया वैसे लोगों को। कहीं
1: नहीं, सवाल ये है, सवाल ये कि दानिश्ता दुखाया किसी का?
5: नहीं मैंने नहीं दिखाया, लेकिन दुख जाता था कहीं पे, जिनकी तरफ ध्यान ही ना गया उनके दुख जाते थे दिल बेचारों के।
1: नहीं वो तो ना दानिश्ता हो गया ना, वो तो आप कह लें कि गलती होगी। एक होता है कि जानबूझ के इरादतन,
5: जानबूझ सारी जिंदगी कोशिश यही की है कि अल्लाह करे ऐसी कोई गलती ना हो, किसी का दिल दुख जाए हमसे। ये है,
1: कभी कभी होता है कि आप ना किसी की बेहतरी के लिए दिल तोड़ते हो किसी का।
5: वो छोटे बच्चों को जो समझाना हो, जब बच्चे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए ना।
1: नहीं बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ों की बात कर रहा। कभी कभी होता है रिश्तों में, मामलात में, सिलसिलों में।
5: अब आप बड़े बच्चों को भी समझाने के लिए करना पड़ता है।
1: वही तो पूछ रहा हूँ कि कभी तोड़ा किसी का दिल?
5: कोशिश बस यही की है कि दिल ना टूटे किसी का। खुद बर्दाश्त कर लिया, सफर कर लिया, बड़ी बड़ी गलत बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं फिर जिंदगी में। अल्लाह यही सुनते हैं ना, सफर करें, बर्दाश्त करें, और फिर ये करते हैं हम, क्या करें। अब ये वो है, ये उनको मैं छोटे छोटे जोक करता हूँ, नाराज हो जाती हैं, बस ये है। तो मुझे आदत है छोटे छोटे मजाक करने की।
1: चलें भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया,
5: बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। कभी कभी पता क्या होता है, कुछ लोग ना हमसे कोई तवक्को कर रहे होते हैं, होता है ना, कुछ लोग हमसे तवक्को कर रहे होते हैं कि यार ये बंदा हमारे साथ ये काम ज़रूर करेगा। एक मिसाल दूं आपको, एक शख्स हो आपके अंडर, हो आपका मातहत हो, आप रोज़ाना उसको ना एक थप्पड़ मारें ज़ोर से रख के, एक दिन थप्पड़ मारें, दूसरे दिन थप्पड़ मारें, तीसरे दिन थप्पड़ मारें, रोज उसको आके थप्पड़ मारें, क्योंकि आप हाकिम हैं, वो महकूम है, आपकी चलती है उसकी नहीं चलती, तो आप रोजाना उसको एक एक थप्पड़ मारें, 99 दिन तक आप ना उसको थप्पड़ मारें, 100वें दिन आप उसके पास आए और वो यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि यार मुझे पिछले 99 दिनों से थप्पड़ पड़ रहे हैं, आज फिर मुझे कुट पड़ेगी। लेकिन उस दिन जो है ना, आप उसको कुछ भी ना कहें तो वो आपका शुक्रिया अदा करेगा कि भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे छोड़ दिया, नहीं तो मैं तो रोज मार खा खा के ना, मेरी तो हालत बुरी हुई हुई थी। आपका बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इसी तरह से होता है कि किसी के साथ जब हम बुरा कर रहे होते हैं ना, मुसलसल बुरा कर रहे होते हैं, इतना बुरा कर रहे होते हैं कि कभी जब हम उनके साथ बुरा नहीं करते तो वो हमारे शुक्र गुजार हो जाते हैं, वो हमारा शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा किया कि आज आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा। इसी तरीके से जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, आप किसी के साथ 99 दिन तक कुछ ना कुछ अच्छा करें, आप उसको कोई फेवर दें, आप उसको खाना खिलाएं, आप उसको पैसे दें, आप उसके साथ कोई भी नेकी भलाई या कोई अच्छी अच्छाई करें, आप 99 दिन तक अगर उसके साथ अच्छाई करेंगे, भलाई करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे, 100वें दिन अगर आप उसको खाना नहीं खिलाएंगे ना, तो वो आपका शुक्रगुजार नहीं होगा, वो आपके साथ गिला शिकवा करेगा, बल्कि हो सकता है गालम गलोच भी करे कि यार आज क्या तकलीफ हुई है, इतने दिन से खाना खिला रहा था, आज क्यों नहीं खाना खिलाया। ये इंसान की नफ्सियात है कि इंसान इसी तरह से कहीं ना कहीं चलता है। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं और बुरा करते करते अचानक से छोड़ देते हैं, तो वो शुक्रिया अदा करता है, और किसी के साथ अगर हम बहुत अच्छा करते हैं और मुसलसल अच्छा करते हैं, मुसलसल अच्छे रहते हैं, तो वो इस चीज़ को अपना हक समझने लग जाता है। वो कहता है कि क्योंकि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुझे रोज़ाना खाना मिल रहा है, क्योंकि मेरे साथ रोज़ाना यहाँ से भलाई हो रही है। होता ना कभी कभी आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, वक्त पे करते हैं, और कभी कभार अगर आप लेट हो जाएं तो लोग उल्टा आपको बातें सुनाते हैं, हालांकि आप तो उनके लिए अच्छाई कर रहे होते हैं, बेहतरी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको बातें सुनने पड़ती हैं। आपने वो एक जुमला तो सुना होगा कि अगर किसी पे एहसान करो तो उसके शर से महफूज रहो। कभी कभी उसका शर जो होता है वो यही होता है कि वो ये समझने लग जाता है कि जो मेरे साथ ये भलाई की जा रही है, ये भलाई नहीं की जा रही, ये मेरा हक था, अगले की ड्यूटी थी। हालांकि अगले की ड्यूटी नहीं होती, अगला तो सवाब की नीयत से, बेहतरी की नीयत से, अच्छी नीयत से आपके काम आ रहा होता है, लेकिन 100वें दिन जो है ना, आप गिला शिकवा करते हैं कि यार ये तूने क्या किया। आप रोजाना किसी को पैसे दें, 500 रुपया दें, कोई मांगने वाला आए, आप रोजाना उसको 500 दें या 10 दें या 50 दें, 99 दिन तक दें, 100वें दिन अगर आप नहीं देंगे ना, तो वो आपको बुरा जानने लगेगा, या एकदम से देना छोड़ दें, तो वो कहेगा कि यार वो आपसे गिले करेगा, शिकवे करेगा। इसी तरह से कभी कभी होता है कि हम किसी के साथ कभी कभी जानबूझ के हम कुछ ऐसा करते हैं जो होता तो कभी कभी अगले के लिए बेहतरी के लिए, लेकिन बज़ाहिर वो कोई बुरी बात होती है, यानी हम उसका दिल तोड़ देते हैं। आज हमारा सवाल भी कुछ इसी तरह का मिलता जुलता सा है। हो सकता है कि मैं आपको अपना सवाल समझाने में कामयाब रहा हूँ, अगर नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, आगे हम जाके इसके ऊपर बड़ी बात करने वाले हैं। एक घंटा पड़ा है हमारे इस प्रोग्राम में, बहुत सारी बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी। एक गाने की तरफ बढ़ूंगा, वापस आके फिर करते हैं मज़ीद बातचीत गुफ्तगू।

0: वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आपके कुछ मैसेजेस को हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। देखते हैं कि हमारे साथ 4471 पे कौन कौन मौजूद हैं। फातिमा हैं और कहती हैं कि आज सबको आपसे डांट पड़ रही है। आज अगर कोई आपके पास हो तो उसे ज़रूर मार पड़ेगी। फातिमा भाई, मैं सब आरजेस को भाई कहती हूँ, लेकिन आपको भाई कहूँ दिल नहीं मानता। फैबुलस शो, बस हल्की सी मुस्कुराहट की कमी है जो मुझे बहुत पसंद है। आज आप मुस्कुरा नहीं रहे, खैर है। आज मैं बहुत गु़स्से में हूँ और इस वजह से मैं आज मुस्कुरा नहीं रहा। आप तो देख ही रही हैं, है ना। आज मैं डांट भी रहा हूँ सबको। चले देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है और इनको आज डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से?
1: जी भाई, कैसे हैं आप?
0: अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कौन बात कर रही है?
1: जी, मैं रिमशा।
0: रिमशा, क्या कहोगी?
1: क्या कहूँगी, आपका शो सुन रही थी, यानी कि थोड़ा थोड़ा, इतना ज्यादा खास नहीं, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है जिसकी वजह से आवाज बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रही।
0: यहाँ पे कहाँ पे बारिश हो रही है?
1: गुजरावाला
0: में।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तेज बारिश हो रही है?
1: आप लगा लेंगे, बस इतनी खास नहीं, लेकिन जो है ना, हवा वगैरह वो बहुत तेज है और बिजली भी चमक रही है। बारिश आ रही है लेकिन इतनी स्लो स्लो, इतनी तेज नहीं है लेकिन।
0: ओके, यानी लाहौर में भी फिर बारिश हो सकती है?
1: जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है, तो यहाँ पे भी हो रही, लाहौर में भी हो जाएगी।
0: तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है।
1: बिल्कुल, आप बताएं, आप कैसे हैं गुड्डू?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
1: आपके शो में इतने दिनों के बाद मैंने कॉल मिलाई है।
0: क्यों?
1: क्योंकि शादी के बाद आप मिलाई आपके शो में कॉल।
0: नहीं, आपकी पहले भी हुई है मुझसे बात।
1: पहले कब हुई है? पहले तो जब आपका जॉइंट फोन बोत के आरजे रॉक्स भाई और रहमान भाई के साथ था कंबाइन शो, तब मैंने कॉल की थी।
0: तो हुई तो थी ना बात?
1: जी हुई थी, उसके बाद अब हो रही है ना।
0: ओके ओके, चलो मान लेते
1: हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये मसला होता है ना भाई, यहाँ पे ट्रांसमिशन बिल्कुल भी नहीं आती, यहाँ पे नेट भी बहुत स्लो है, जिसकी वजह से ना उस पर सुना जा सकता है सही से।
0: तो यूट्यूब देख लिया करें।
1: तो ये मसला है ना, यहाँ पे नेट ही बहुत स्लो आता है, टेस्ट मोबाइल पे ही तो सुना जा सकते हैं ना, लेकिन वो ही स्लो आता है तो फिर कैसे सुनूं?
0: ये तो बहुत,
1: इसलिए तो देखे ना, दिल भी मेरा किस तरह। तो जो लड़की लाहौर में हर शो में कॉल करती थी, रेडियो सुनने बगैर नहीं रहती थी, वो यहाँ रेडियो के बगैर रहती है।
0: बस शादी के बाद तो फिर ऐसे होता ही है ना।
1: ओ अल्लाह, ऐसे नहीं होता भाई, ये होता है कि शहर, ये जो शहर है ना, ये सही नहीं है यहाँ पे। बस मैंने कहा यहाँ से बस निकल जाऊँ किसी तरह में।
0: नहीं, अब तो आप वहाँ की हो गई हो, अब कहाँ से निकल?
1: नहीं, यहाँ की मैं पक्की नहीं हुई हूँ, यहाँ से सास ससुर रहते हैं, लेके रहते हैं, हमने इस्लामाबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उधर भी शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, उधर होंगे और कुछ दिनों में हमने वहाँ चले जाना है। मैंने कहा शुक्र है, यहाँ से तो मेरा चेहरा छूटेगा ना।
0: कितनी तंग हो ना अभी से अपने सास ससुर से, इतनी तंग हो जान छुटेगी अभी से ऐसी बातें करना शुक्र है। अभी तो टाइम ही कितना हुआ है शादी को,
1: यहाँ पे नेट सही नहीं आता और रेडियो नहीं सुन पाती।
0: देखो ना, अब इस तरह अपने ससुराल को ऐसे तो नहीं कहना चाहिए ना, वो भी इस तरह रेडियो पे आके।
1: लेकिन उनको वो भी, हालांकि उनको पता है कि ये लड़की जो है ना रेडियो के बगैर नहीं रहती। मैंने तो उनसे खुद कहा है, मैंने कहा पापा मुझे इधर नहीं रहना, उन्होंने खुद कहा कि आप उधर चले जाओ, यहाँ पे उनको खुद मसला होता है। वो कहते हैं कि हम भी कभी किसी दौर में रेडियो सुनते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना ट्रांसमिशन नहीं आती, हमने भी सुनना छोड़ दिया। मैंने कहा मगर मैं सुनना नहीं छोड़ सकती, मेरी आदत है। मैंने कहा पापा मुझे इधर नहीं रहना, उन्होंने खुद कहा कि आप उधर चले जाओ, यहाँ पे उनको खुद मसला होता है। वो कहते हैं कि हम भी कभी किसी दौर में रेडियो सुनते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना ट्रांसमिशन नहीं आती, हमने भी सुनना

0: चलो अल्लाह आपके लिए बहुत सारी आसानियां फरमाए।
1: आप दुआ में मुझे याद रखिएगा।
0: जरूर
1: आपको मैं याद थी।
0: हाँ हाँ मुझे आप याद हो।
1: चलिए शुक्र है, मुझे भी याद थे आप। अपने बहुत ज्यादा याद रखिएगा सभी सुनने वालों को मेरा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से?
2: सायरा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से।
0: सायरा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। शो सुन रही थी आपका, जबरदस्त शो है, फर्स्ट टाइम सुना है, अच्छा लग रहा था। टॉपिक भी बहुत अच्छे डिस्कस कर रही थी।
0: दिल तोड़ा है आपने किसी का जानबूझ के?
2: कभी भी नहीं तोड़ा।
0: कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग ना आपसे बहुत ज्यादा अटैच होने की कोशिश कर रहे होते हैं और आप उनको उस तरह से एंटरटेन नहीं कर पाओगे। आपको पता होता है कि यार ये मेरे साथ इस तरह अटैच होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और अगर मैं इसको अपने साथ जोड़ लूँ या जोड़ने की कोशिश करूँ तो इसको बाद में हर्ट ही होगा, इसको दुख ही पहुँचेगा मेरे साथ अटैच होने से। तो फिर आप उस वक्त ना आप उनको पहले ही रिजेक्ट कर देते हो, उनको मना कर देते हो, उनको मुंह पे कह देते हो कि यार आप ना कुछ और देख लें, कुछ और मामला कर लें। यानी इन शॉर्ट आप ये कह लें कि कभी कभी हम लोगों की मोहब्बतों को रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता होता है कि बाद में ये हमसे दुख उठाएंगे क्योंकि हम इनको उस तरह से वक्त नहीं दे पाएंगे, चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो ये भी तो किसी का दिल दुखाना ही होता है ना?
2: होता है, बिल्कुल होता है। मैं आपको
0: तो ऐसे कभी नहीं हुआ आपके साथ?
2: हुआ है।
0: यही पूछ रहा हूँ मैं।
2: अच्छा,
0: कि कभी किसी का जानबूझ के दिल तोड़ा है? यही होता है किसी का जानबूझ के दिल तोड़ना।
2: जानबूझ के क्या, मैं नॉर्मल थी पहले, फिर मैं जब मैट्रिक में गई तो मैं किसी टाइफाइड हुआ तो मैं टोटल ब्लाइंड हो गई।
0: ओहो।
2: जो पहले किसी से था कुछ एक चलता था, जब मैंने उनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपके घर वाले नहीं किस चीज को मानेंगे, ठीक है, तो यानी कि शादी का, मैंने कहा नहीं हो सकता। तो बाद में बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं समझा, फिर मैंने कहा नहीं, वो मुझे कहने लगे कि मैं इस चीज को मैनेज कर दूंगा, मैं जानता हूँ कैसे होता है। तो फिर आखिर बड़ा समझाने वो नहीं समझा, तो उसने कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो इतना डिसाइड हुआ कि उस बेचारे की अपना कुछ अर्से के बाद डेथ होगी। मुझे उसके हर वक्त ये गिला उसको होता था कि तुमने जानबूझ के मेरा दिल तोड़ा है, जानबूझ के तुमने कहा है, क्यों नहीं आप अगर सारा अपने आप को संभाल सकती हो, घर आपने संभाला है, तो मेरे साथ क्यों ऐसे कह रही हो। तो जाहिर है फिर आपको क्या कि वो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा माशरा नहीं है कि एक एक स्पेशल बंदा है, सॉरी ब्लाइंड हूँ, सैडनेस हूँ, उसको रख सकता है नहीं। इतना अच्छा कोई रखेगा? जो सास ससुर होते हैं वो आकर कहते हैं तानाजानी तो चलती है, तो नहीं है ये, बस हुआ था। लेकिन आज दिन तक मुझे बहुत दुख होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को जानबूझ के इस तरह मैं उसके साथ ऐसा ना करूँ, या मेरी वजह से, मेरी छोटी सी बात से उसको वो दिल बर्दाश्त हो जाए।
0: चलें अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां करे, बहुत सारी दुआएं हैं आपकी, और कुछ कहना चाहेंगे?
2: बस अच्छा शो चल रहा है, अच्छे अच्छे लोग हैं। हमेशा जब आप रेडियो पे आते हो ऐसा सोच लिया कि हमने कुछ ऐसी बात करने के अगले, बेशक अगले का दिल भी ना दुखे, वो कुछ कैसे कुछ भी ना दुखे, वैसे कहते हैं हवा के दोष में हम लोग एक रिश्ता होता है, हमारा एक रिश्ता होता है, इसको दिल में ना आप बात को लगाया करो, जो कुछ कहता है तो उड़ा दिया करो उसको।
0: बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सायरा जी, थैंक यू सो मच आपने कॉल की।
2: ठीक है, जज़ाकअल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज। जुगनू जूनियर हैं और कहते हैं कि बीत चुके हैं 23 साल, गूंगा माजी अंधा हाल, उजड़े पंछी टूटी डाल, फैले हैं अनजाने जाल, बीत चुके हैं 23 साल, अज़्म से खाली है दस्तूर, जहदो अमल की मंजिल दूर, शमा क़यादत है बेनूर, गुलशन में फूलों का काल, बीत चुके हैं 23 साल, अकरो फिरासत हैं बीमार, फिक्रो नज़र वाले बेकार, दीदा

आए वहशत है बेदार, लर्जा है हिम्मत की ढाल, बीत चुके हैं 23 साल, भारी हैं हम पर अगियार, भूले तारिक और जर्रार, नगमाए वहदत से सरशार, मिल्लत की अजमत के लाल, बीत चुके हैं 23 साल, अपने सफीने आप जलाओ, सीनों में एक आग लगाओ, दीने मोहम्मद के शैदाओ, गहरी जुल्मत के चाल, बीत चुके हैं 23 साल, सागर को देखा तो होगा, आप ही अपने गम पर हंसता, अभी अभी ता राह से गुजरा, बिखरे बिखरे उलझे बाल, बीत चुके हैं 23 साल। सागर सदीकी की आपने एक नज़्म भेजी, क्या सोच के भेजी, 23 साल, लेकिन अच्छा है। आर के मुग़ल हैं, आर के मुग़ल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि पूरा दुख और आधा चांद, हिजर की शब और ऐसा चांद, दिन में वहशत बहल गई, रात हुई और निकला चांद, किस मक्तल से गुजरा होगा इतना सहमा सहमा चांद, यादों की आबाद गली में घूम रहा है तन्हा चांद, मेरी करवट पर जाग उठे नींद का कितना कच्चा चांद, बादल के रेशम झूले में भोर समय तक सोया चांद, सहरा सहरा भटक रहा है अपने इश्क में सच्चा चांद, रात के शायद 1 बजे हैं, सोता होगा मेरा चांद। क्या बात है। और आर के कहती हैं कि सर जी आप हफ्ते में सिर्फ एक शो ही क्यों करते हैं, हमसे 4-5 शो तो किया करें। इतनी बातें फिर मैं कहाँ से लेके आऊँ। साजिद अली हैं, कहते हैं द मोमेंट ऑफ सेइंग गुड बाय वाज सो स्ट्रेंज, ना इज द वर्ड्स हैड गॉटन लॉस्ट समवेयर, इवन हर कोही स्मग्ड एंड फ्लॉड अवे। ओके, थैंक यू सो मच साजिद, आपने बड़ा खूबसूरत सा ये मैसेज भेजा है, और ठीक है आप जो कह रहे हैं आपकी बात भी ठीक है। अस्मा कौसर हैं और सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम सुन रही हैं, पसंद कर रही हैं। ताहिरा कहती हैं कि मैं 2 बार तलाक का बोझ उठाए, दिन भर अपनों के तंज और तानों के साथ सबका तन्हा सामना किया है और कर रही हूँ, इन सब हालात ने मुझे इतना मजबूत कर दिया है कि अब मुझे किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कहे मुझे रोना नहीं आता, मुझे तन्हाई में ख़ुद को जानने समझने सुनने और ख़ुद को संवारने का मौका मिला है, सिलाई मशीन है, FM रेडियो है और मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिरा आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां फरमाएं और आपको मज़ीद मजबूत करे। जुनैरा ख़ान लाहौर से कहती हैं कि जी मैंने आपी सिस्टर का रिश्ता घर वालों को बोलकर तोड़ दिया था, मुझे वो रिश्ता अपनी सिस्टर के लिए ठीक नहीं लगा था तो मैं सबके अगेंस्ट गई थी। बड़ी एक्यूरेट बात की, अभी कुछ देर पहले मैं भी ये सोच रहा था कि ये वाला पॉइंट रेज करूं। कभी कभी ना ख़ानदान में कुछ रिश्ते आते हैं और वो रिश्ते भी किसके होते हैं, हमारे अपनों के ही रिश्ते होते हैं, और हमारे ख़ानदानों में अक्सर नफ़रतों या नाराज़ियों की अक्सर बड़ी वजह ये भी होती है कि रिश्ते के लेन देन से इनकार किया गया होता है। किसी की लड़की मांगी होती है, किसी का लड़का मांगा होता है और आगे से इनकार हो गया होता है, और उस बिना पर एक दुश्मनी की बिना रखी जाती है, कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद पर कहीं ना कहीं नफरत की बिना रखी जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिश्ते होते हैं, हम कि जो लड़का या लड़की का रिश्ता करते हैं और ख़ानदानों में बाज़ुकात करते हैं, तो कभी कभी हमें बहुत सारे रिश्तों को रिजेक्ट करना पड़ता है और उस रिजेक्शन के ऊपर हमें फिर बहुत सारी नाराज़गियाँ भी मोल लेनी पड़ती हैं। हमें पता होता है कि जब हम ये रिजेक्ट करेंगे तो अगले का दिल दुखेगा, अगला शायद इस चीज़ का बहुत बुरा माने,
लेकिन हमने वो जो रिजेक्शन की होती है वो अच्छे के लिए की होती है।

0: अभी फातिमा का मुझे मैसेज आया था और वो कह रही थी आज आप सबको डांट रहे हैं। नहीं फातिमा, मैं कहाँ डांट रहा हूँ, मैं तो बस बात कर रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डांट रहा हूँ? अच्छा, कुछ मजीद मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। अली अब्बास हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई लाइक योर शो, स्टे ब्लेस्ड, बहुत शुक्रिया। और आज खैरियत तो है ज़िया, आज फुल क्लास प्रोग्राम चल रहा है? नहीं, आज बिल्कुल भी क्लास प्रोग्राम नहीं चल रहा, आज तो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और आज तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपने जानबूझ के कभी किसी का दिल तोड़ा है? कभी कभी उस्ताद जो है वो सज़ा देता है, और जब हमें सज़ा मिलती है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जो सज़ा होती है, वो जो हमारा दिल टूटना होता है, ज़ाहिरी बात है जब हमें सज़ा मिलती है तो किसको अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर एक इस्लाह का पहलू होता है, उसके अंदर एक ये पहलू होता है कि ये सज़ा इसलिए मिल रही है ताकि दोबारा ये गलती ना की जाए। कभी कभी कुछ लोगों को किसी चीज़ की आदत ना पड़ जाए, इसलिए भी हम बाज़ुकात कुछ चीज़ों का रब्त तोड़ते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे आप किसी को अगर 100 दिन मुसलसल खाना खिलाएंगे और फिर उसके बाद 100 दिन के बाद अगर आप उसको खाना नहीं खिलाएंगे तो वो तो गुस्सा होगा, वो नाराज़ होगा, वो होगा कि मेरा हक था कि मुझे रोज़ाना खाना मिला जाए, मुझे 100 दिन से यहाँ से खाना मिल रहा था और आज आपने खाना ही नहीं दिया। लेकिन कभी अगर आप उसको खाना देंगे, कभी खाना नहीं देंगे, यानी रूटीन नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ जगह होती है ना अक्सर वहाँ से मुफ्त का खाना मिलता है और कभी मुफ्त का खाना नहीं मिलता, तो वहाँ से लोगों को ये पक्की उम्मीद नहीं हो जाती कि यहाँ से हम जब भी जाएंगे तो हमें खाना मिलेगा, बल्कि ये होता है कि हाँ कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। लेकिन जहाँ से आपको ये पक्की उम्मीद हो जाए ना कि यहाँ से ये चीज़ ज़रूर होगी और वहाँ से कभी ना हो, तो फिर दिल बहुत ज़्यादा टूटता है। हमारे इन मौजूआत का मकसद कभी कभी ये भी होता है कि हम नफ्सियात को भी समझें कि हमारे इर्द गिर्द लोग, रवैये, मामलात, इंसान किस तरह से सोचते हैं, काम करते हैं, और किस तरीके से हम उनको सोच के समझ के अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाज़ औक़ात नागवार गुजर रही होती हैं, लोगों की, दूसरों की, लेकिन उसके अंदर मकसद जो होता है वो हमारी भलाई होता है। हम बाज़ुकात इस एंगल से देख ही नहीं रहे होते, कभी कभी देखना जरूर होता है। जुगनू जूनियर कहते हैं कि 23 नहीं 30 साल है। चलें जी 23 हो या 30 हो, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया था वो नज़्म पढ़ के, सही बताऊं मैं आपको। वो एक ऐसी नज़्म थी जो आपने 23 या 30 साल वाली भेजी थी, वो किसी मौके के हिसाब से होती ना, आपने किसी मौके के हिसाब से भेजी होती, किसी कुछ क्रिएट करके, कुछ ऐसा आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता और फिर उसके बाद आप वो नज़्म रखते सामने, तो वो पढ़ के मज़ा भी आता। अब ये 30 साल किस तनाजुर में बात हो रही थी, वो मुझे मज़ा नहीं आया, समझ नहीं आई और फिर मज़ा नहीं आया। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती, फिर आपको मज़ा भी नहीं आता। जिस तरह से आज बहुत सारे लोगों को मेरे मौजू की समझ नहीं आ रही, इस वजह से उनको मज़ा भी नहीं आ रहा। आर के मुगल कहती हैं कि अरे इतनी बातें कहाँ से लाऊं, ये कैसे हो सकता है कि आपके पास बातें ख़त्म हो जाएं। अली अब्बास कहते हैं कि जी 15 साल हो गए हैं, हमें भी पता है जनाब आरजे ज़िया। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम।
0: कौन बात करें, कहाँ से?
1: जी भाई, मैं तारिक बात कर रहा हूँ।
0: तारिक भाई थोड़ा खुल के बात करें ना, ऊंचा बोलें।
1: एक्चुअली रूम में सो रहे हैं ना, मैं इसलिए स्लो हो रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं बिलीव करें, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनना चाह रहा था, लेकिन अभी जो भाई साहब आए थे ना जिन्होंने कॉल की है, तो आपने कितने अच्छे तरीके से इनको गाइड किया, समझाया, और बहुत ही अच्छा लगा, यकीन करें।
0: नहीं, मैं तो, लोग कह रहे हैं कि मैं आज डांट रहा हूँ सबको।
1: नहीं, बहुत अच्छा लगा। देखिए ना, अच्छे उस्ताद की तो खूबी होती है, 15 साल में आप हमारे साथ अटैच हैं तो ये होता है बड़ापन, इतने अच्छे तरीके से आपने उनको गाइड किया। बिलीव करें, मैंने खामोशी से सुनना था लेकिन मैंने मजबूरन कॉल की आपको।
0: चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तारिक भाई। कुछ और कहना चाहेंगे?
1: जी, मिशा को मुबारकबाद देना चाहूँगा शादी की, और अनिला आपी को, साहिदा को, सबको सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया तारिक भाई। कुछ और कहना है?
1: सर, थैंक यू सो मच, मैं सुनूंगा एक्चुअली। सो
0: चलें चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से?
2: मैं साजदा बात कर रही हूँ, लाहौर से।
0: जी साजदा, क्या कहना चाहेंगी?
2: जबरदस्त शो और टॉपिक भी अच्छा है। अगर हम किसी का जानबूझ के यानी कि हम दिल तोड़े तो बिना वजह उसको, यानी कि ये होता है, मेरी को वजह बताओ यानी कि क्यों तोड़ा तुमने दिल, या कोई वजह हो, कोई बात हो, हम वजह भी नहीं बताते और उसको कह देते हैं भाई, यानी कि उससे ना दूर दूर रहते हैं। तो यकीन करे, जो उसी को तकलीफ होती है उससे ज्यादा कई तकलीफ हमें भी होती है, क्योंकि हम उससे ज्यादा ना अटैच थे, अच्छा हो हमारी दोस्ती थी उससे।
0: बड़ी खूबसूरत बड़ी खूबसूरत बात।
2: तो वो जो तकलीफ है ना, वो अंदर अंदर हमें खाई जाती है, हमें भी और उसे भी। फिर वो ना, जब उसका कोई अच्छा काम होता है ना, तो वो कहते हैं इससे अच्छा ही हुआ है, यानी कि मैं, हमारी लड़की हो गई है, अब मैं बहुत स्कूल में हूँ, या मेरे देखो या बेहतर हो गया हूँ। तो वो ना, या वो मजाक में है, उसे बातों बातों में तंजबाजी से उसे जिताता है या बात करता है, तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो वो नजरें चुराता है, यानी कि वो कहता है मैंने तो इसके फायदे के लिए किया, तो उल्टा वो फायदा उसको नुकसान में होता है। तो वो तो तकलीफ में होता है, तो दूसरा उससे ज्यादा होता है।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया साजदा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। और वाकई ऐसे होता है कि जब आप किसी का जानबूझ के दिल तोड़ते हो उसकी बेहतरी के लिए, तो आप भी अंदर से खुश नहीं होते, आप भी अंदर से, आप भी तकलीफ में होते हो।
2: उसकी हर बुरी बात हमें अच्छी लगती है, हम एक दूसरे को कम्प्रोमाइज करते होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है हम एक दूसरे से नजरें चुराते हैं, नजरें नहीं मिलाते, या हम कह भी नहीं पाते हम क्यों छोड़ा है तुम्हें, क्यों नहीं छोड़ा। तो वो जो उनसे होता है ना, जिसको छोड़ा होता है उसके दिल में ये, मुझे क्यों छोड़ा है, मेरी वजह बात क्या थी, ऐसे छोड़ दिया मुझे, दोनों के दिलों में ना फिर भी मसला होता रहता है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया साजदा, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
2: छोटे तारिक को बहुत ज्यादा सलाम, और सब सुनने वाले को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा सलाम। रिमशा, अगर आप सुन रही है तो आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो।
0: खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। वल जनाब, बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं और अपनी अपनी राय हमें दे रहे हैं। बहरहाल जी, आप सबकी मोहब्बतों चाहतों का बेहद शुक्रिया। एक खूबसूरत से कलाम की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके आपसे मज़ीद बातचीत के सिलसिलों को यहीं से जोड़ते हैं। सुनते रहें, साथ साथ रहें 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से, खुश आमदीद। हुसना कवल हैं हमारे साथ। हुसना थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद हैं। फराह अफजाल हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो, विद यू रिस्पेक्ट, मेरे नज़रिए के मुताबिक अगर दो लोग समझदार हैं, बच्चे नहीं रहे तो वो डायरेक्टली भी डिटैच हो सकते हैं, दिल दुखाए बगैर भी यू कैन डिटैच टू सम बॉडी। अब ये तो सेल्फ क्रेडिट लेने वाली बात हो गई कि हमने इसे दिल तोड़ा ताकि आगे ना टूटे। सिली एक्सक्यूज, सॉरी। माँ जबीन है, कहती हैं कि जानबूझ के नहीं तोड़ा दिल, कोई बात जो बुरी लगी हो या कोई बात जो किसी को पसंद नहीं वो कह दी तो बहुत से दिल टूट जाते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, आमीन।